0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। सुबह के 5:58.40 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6 बजने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च

0: करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये मातृवंदना समूह स्वर में।

समूह स्वर में ये मातृवंदना अभी आपने सुनी और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गणेश भजन वाणी जयराम के स्वर में। रचना है संत तुलसीदास की।

संत तुलसीदास की रचना थी, रघुनाथ सेठ का संगीत और स्वर था वाणी जयराम का। और अब आइए

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं यह भक्ति रचना। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम रचना अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। वक्त हुआ है 6:25। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। 6:30 पर आपसे कुछ ही देर बाद सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अनूप जलोटा के स्वर में। भूले बिसरे गीत सुनिएगा 6:40 पर। प्रातः 7 होगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 ये वक्त होगा कार्यक्रम कृषि संकेत का, जिसमें आज आप सुनेंगे गौरस ऐप पशुपालकों का सहायक, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश शाह। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर सुनिएगा आज साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। 7:50 पर हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, विश्व रक्तदाता दिवस, ये होगा विषय और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभिषेक।

एक जैन जो कि सीएमओ हैं डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के, और इनसे बातचीत करेंगे दीपक निषाद। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात रिले करेंगे दिल्ली से। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत में कुछ बुंदेली लोकगीत। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बाल सभा, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय कर्रापुर सागर। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी रिले करेंगे भोपाल से। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज इस कार्यक्रम के प्रथम भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय तन मन जगाए बात बन जाए। 11 बजे सुबह सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर। 11:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल से रिले किया जाएगा। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार, 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली से, 2:30 से मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे होगा इस घंटे की सुर्खियां, रिले करेंगे भोपाल से, और भोपाल से ही सुनेंगे युववाणी शाम 5:02 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। शाम 5:40 पर सुनिएगा काव्य गोष्ठी। शाम 6:30 से आईसीसी महिला क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 से फिर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। रात्रि 8 बजे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण भोपाल से किया जाएगा। आज का विषय होगा सशक्त भारत। रात्रि 8:45 से फिर क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या रात्रि में, और 9 बजे से फिर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। तो यह था कार्यक्रम विवरण।

और अब वक्त हुआ है सुबह के 6:30, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अनूप जलोटा के स्वर में।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई।

गई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आपने सुना अनूप जलोटा के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। वक्त हुआ है 6:40 और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये पहला गाना KL सहगल की आवाज में है। फिल्म का नाम है मंजिल।

0: KL सैगल की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। बोल पंकज मलिक के थे, फिल्म थी मंजिल।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अमर का ये गाना।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बारिश फिल्म का गाना। तलत महमूद और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।

0: बाजार।
1: और इस गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां

कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं को ब्रिजेश रिचारिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं अपना परिचय स्वयं देने का चलन बहुतायत देखा जा सकता है, लेकिन यहां परिचय का आशय अपना नाम गांव बताना नहीं है। ये तो स्वाभाविक चीज है, क्योंकि तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप नहीं तो कोई और बताएगा, अन्यथा जो व्यक्ति आपके सामने आया है उसके उससे आपका संवाद स्थापित कैसे होगा, क्योंकि अनजान व्यक्ति तक मूलभूत पहचान तो पहुंचानी ही पड़ेगी, या तो खुद पहुंचाएंगे या किसी के माध्यम से। लेकिन

हम जिस परिचय की बात कर रहे हैं वो है अपनी खूबियां बताना, गुणगान करना, खुद की प्रशंसा करना, जो कि बहुत देखा जाता है। जबकि इससे थोड़ा परहेज किया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसकी मौजूदगी का एहसास करा देता है, साथ ही अपनी अहमियत भी जता देता है। वैसे ही हम अपने बारे में खुद कुछ ना बोलें, बस अपना काम करते रहें, तो हमारे किए गए कर्मों का परिणाम, उनका फल स्वयं ही हमारा परिचय दे देगा, और ये परिचय चिरस्थायी होगा। क्योंकि इस तरह से जो परिचय आपका लोगों तक पहुंचेगा तो उनके दिल में गहराई तक पहुंचेगा और अपना पक्का स्थान वो सुनिश्चित करेगा। और जहां आप चाहते हैं कि आपकी पब्लिसिटी हो, आपको लोग जाने पहचाने, वहां फिर आपको खुद ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्मों के कारण, आपके गुणों के कारण जो भी आपको जानेगा वो अपने आप ही अपने से मिलने वाले 4 और 10 और 100 लोगों को आपके बारे में बताएगा। तो इस तरह से जो विस्तार होगा आपका वो ज्यादा मजबूत होगा, अच्छा होगा। और ये प्रचार स्वतः होगा और खुद आपका परिचय आपकी आगवानी करेगा, यानी कि आप इस तरह से जब आपकी पहचान फैलेगी, दूसरों तक पहुंचेगी, तो आप जहां पहुंचने वाले होंगे उससे पहले आपकी पहचान पहुंचेगी और आप चर्चा का विषय बनेंगे कि वो आने वाले हैं। आपके कर्मों को अच्छे बुरे का तमगा कोई और दे देगा, वो होगा आपके कार्य का फल का भोक्ता, यानी आपने जो काम किया है उसका फल जो भोगेगा या उससे जो प्रभावित होगा वो तय करेगा कि आपने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया। कहीं कहीं कभी कभी अच्छे कामों को भी बुरे होने का आरोप लग जाता है, लेकिन वो आरोप ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। पूर्वाग्रह या दुराग्रह वश कोई अच्छे को बुरा कह सकता है, लेकिन उसकी बहुत परवाह करनी नहीं होती है, क्योंकि वे खुद उनका कुछ कर नहीं पाते। तो हम क्या करेंगे, बस अपने धुन में अपना काम करते रहें। तो दीपक के प्रकाश और फूलों की सुगंध की तरह स्वतः ही फैलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है सुबह के 7:05। ये समय होता है कार्यक्रम कृषि संकेत सुनने का। तो आज का कृषि संकेत लेकर हम हाजिर हैं। विषय है गौरस ऐप, पशुपालकों का सहायक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीलेश शाह।
1: गौरस ऐप पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इस ऐप की विशेषता यह है कि पशुओं को जो उत्पादन के लिए, शारीरिक रखरखाव के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए जो फीड एंड फॉडर की आवश्यकता होती है या आहार की आवश्यकता होती है, उसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए गौरस ऐप तैयार किया गया है। अभी हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो फीडिंग का पैटर्न है या पशुओं को आहार देने का पैटर्न है या तरीका है, वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक पद्धति अनुसार नहीं है, जिसके कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता कम होती है। और कई बार तो ये रहता है

क्योंकि उनमें पोटेंशियल होता है दूध देने का, लेकिन अगर हम उनको आहार नहीं दे रहे हैं तो उस वजह से पशुओं का उत्पादन हम अधिकतम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा गो रस ऐप तैयार किया गया है। इसको हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसमें पशु के शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आहार की गणना की गई है। जैसे कि पशु किस स्थिति में है, अगर वो गर्भावस्था में है तो उसके लिए उसका आहार अलग होगा, अगर वो दूध देने की स्थिति में है तो उसका आहार अलग होगा, वो दूध भी वो कितने महीने से दे रही है, इस प्रकार के कई पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर के आधार पर हमको अपने एंट्री करना पड़ती है। और जब हम ये सारी प्रविष्टियाँ गोरस ऐप पे कर देते हैं तो यह ऐप हमको यह बताता है कि हमको उसकी शरीर की अवस्था के अनुसार कितना फीड एंड फॉर्डर देना है या आहार देना है। ये ऐप हमसे ये भी पूछता है कि वर्तमान में हम क्या खिला रहे हैं, और जब हम ये सारी प्रविष्टियां कर देते हैं तो वो अपनी अनुशंसाएं ऐप देता है कि हम आहार ज़्यादा दे रहे हैं तो बता देगा, अलर्ट आ जाएगा, आहार कम दे रहे हैं तो अलर्ट आ जाएगा, और किस घटक को हमको बढ़ाना है, यदि हरे चारे को बढ़ाना है तो उसका अलर्ट आ जाएगा, यदि दाने को कम करना है तो उसका अलर्ट आ जाएगा। यानी कि जो वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं उसके अनुरूप इस ऐप में हम सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे फायदा हमको ये होगा कि एक तो हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, पशु आहार की लागत को कम कर सकते हैं, और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऐप के संचालन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी या पैरावेट से वो मार्गदर्शन ले सकते हैं, ताकि इसको कैसे चलाया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि संकेत गोरस ऐप पशुपालकों का सहायक। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीलेश शाह। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे भोपाल से बस कुछ ही देर में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ अंतरित करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से

0: और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मिलो दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपए की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
3: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चला है। हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही

0: सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपों मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर, संकलनकर्ता सुमित दुबे, प्रस्तुति दीपक निषाद की।
1: गागर में सागर।
2: नमस्कार, गागर में सागर इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के संक में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पत्रिका के 5 सेगमेंट यानी कि 5 पड़ाव हैं, जिनके तहत बहुत कुछ समेट कर लाते हैं हम आपके लिए। तो चलिए पत्रिका की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट सागर मंथन के साथ।
1: सागर मंथन।
2: सागर मंथन में बीते

0: इस सप्ताह की कुछ खास गतिविधियां। सात जून दिन रविवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अब्दुल गनी खान स्टेडियम में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया साइकिल ड्राइव का आयोजन किया गया। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक पी साठे जी ने कहा,
1: हम लोगों के विभाग की तरफ से भारत सरकार की खेलो इंडिया स्कीम एवं फिट इंडिया साइकिल ड्राइव के अंतर्गत 7 जून को संडे ऑन साइकिल स्पेशल फिट इंडिया साइकिल ड्राइव का हम लोगों ने आयोजन किया था और साथ ही हमें NCC, NSS और क्रीड़ा भारती सागर महाकौशल प्रांत का भी हमें सहयोग इसमें प्राप्त हुआ था। और ये जो साइकिल रैली थी ये युवाओं में फिटनेस को, अपने तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए और जो हमारे जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, इन सब उद्देश्य से जो है इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। 7 जून को ये साइकिल रैली विश्वविद्यालय के जो स्टेडियम है अब्दुल गनी खान स्टेडियम, वहाँ से प्रातः 7 बजे जो है प्रारंभ हुई थी और वहाँ से होते हुए गोपालगंज से होते हुए पंडित दीनदयाल चौराहा जो बस स्टैंड के पास में, वहाँ से घूम के और फिर वापस गोपालगंज होते हुए यहाँ स्टेडियम पर समाप्त हुई थी। इसमें कई शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और इस साइकिल रैली का शुभारंभ जो है हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर YS ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखा के किया गया। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर SP उपाध्याय साहब भी मौजूद थे। दोनों ने ही हमारे प्रतिभागियों को अपना आशीष वचन दिए। विद्यार्थियों ने, स्टाफ ने और भी दूसरे सब हमारे सहयोगियों ने इसमें सहयोग करा और स्वस्थ जीवन शैली के विकास में अपना योगदान दिया।
0: इन दिनों विश्व योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय में 20 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पहले दिन आयुष मंत्रालय के 56 मिनट के योग प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास किया गया। शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सरोज गुप्ता ने हमें बताया,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में 2 जून से योग ध्यान प्राणायाम का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और हमारे महाविद्यालय के खेल विभाग के जो प्रभारी हैं सुरेंद्र यादव और NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा जैन अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में योग प्राणायाम और ध्यान का शिविर लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मंशा के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक तैयारियां इस हिसाब से की जा रही हैं ताकि महाविद्यालय के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रशिक्षित होकर के अन्य लोगों को भी योग और प्राणायाम ध्यान के संबंध में जानकारी दे सकें। ये योग प्रशिक्षण हमारा 2 जून से शुरू हुआ है और 21 जून तक रहेगा। इस बीच हमने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को भी आवेदन किया है और इसमें हम चाहते हैं कि 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार भी हम करें और 30 दिवसीय योग शिविर, योग को जीवन शैली में ढालने के उद्देश्य से व्यापक अभ्यास सत्र हम चालू कर रहे हैं और ये 21 दिवसीय तो प्रशिक्षण चल ही रहा है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि महाविद्यालय में हमारा जो स्टाफ है, हमारे तीनों फैकल्टी के विद्यार्थी हैं, वह योग में अपना समय दे करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी, चूंकि यहाँ पर छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, सूर्य नमस्कार सीख करके, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है और इसके माध्यम से 12 चक्रों में शिक्षण दिया जाता है और सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे भी हैं।
0: 10 जून दिन बुधवार को संदीपनी विद्यालय में सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन के सहयोग से और रंग के साथी ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित 15 दिवसीय निशुल्क चित्रकला कार्यशाला रंगों की पाठशाला का समापन हुआ। 26 मई से 10 जून तक चलने वाली इस कार्यशाला में 125 बच्चों ने सहभागिता की

0: लगभग 700 चित्र तैयार किए। समापन अवसर पर बच्चों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: बच्चों की इतनी बड़ी उपस्थिति और आज जब हम 15 दिवसीय निशुल्क चित्रकला की जो वर्कशॉप है उसके समापन पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभिभावकों की इतनी बड़ी संख्या देख के मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि आप सब लोगों का अपने बच्चों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे कितना ध्यान है। हम बच्चों को सिर्फ कक्षा में प्रथम आने का आशीर्वाद नहीं देते, हम बच्चों को किसी कंपटीशन में हिस्सेदारी होने पे उसको पुरस्कार लाने के लिए आशीर्वाद अकेला नहीं देते। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हों, बच्चे खेलने में भी अच्छे हों, बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हिस्सेदारी करें, हर तरह के कंपटीशन में उन बच्चों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपने बच्चों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहेंगे, और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है, और मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो थोड़ी बहुत भूमिका मेरी भी है। रंग के साथी संस्था के सम्मानी असरार मियां ने जब मुझे ये आइडिया दिया तो ये आइडिया मुझे एकदम मनमोहक लगा। मुझे लगा कि बच्चों के लिए अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा सोच के ये 15 दिन का ये ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप शुरू किया गया। कहा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत अच्छी है इसका मतलब है वर्क इज ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीटेड। तो मैं ये मानता हूं कि ये हमारी एक शुरुआत थी और ये शुरुआत निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, बहुत ओवरवेल्म है। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि बच्चों को ये कार्यशाला पसंद आई। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यशाला को प्रतिवर्ष करेंगे और इन्हीं बच्चों में से होनहार चित्रकार इनके अंदर जो छुपा हुआ है उसको उकेरने की कोशिश करेंगे।
0: इस मौके पर बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए।
2: I wanted to give a big thanks to Asraf sir and Aishika ma'am who has helped us in making drawings and also teaches us basic drawings to higher level drawings. Like they have teaches us basic shapes, different type of colors and their different type of shades. And lastly, I wanted to thanks to all the staff of the school who has maintained our hygiene and cleanliness of the classroom.
0: इन दिनों सहुद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवेश प्रभारी और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ व्याख्याता श्री साहब सिंह यादव ने बताया,
3: ये सहुद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर, इसमें प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं। द्वितीय चरण चल रहा है, ये रजिस्ट्रेशन 9 जून से 18 जून तक चलेंगे और उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 10 जून से 22 जून तक चलेगी। तो पहले बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन पे, उसके बाद उसका फॉर्म ऑटोमेटिक किसी ना किसी हेल्प सेंटर पे अलॉट हो जाएगा, बच्चे को जाना नहीं पड़ेगा और ऑनलाइन ही वो 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद वो दूसरे दिन जाके उसी एमपी ऑनलाइन पे चॉइस फिलिंग कर सकता है। और चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो 10 जून से 22 जून तक रहेगी और उसके बाद 23 तारीख को एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगी, वो ऑल ओवर एमपी में आपका मेरिट में कौन सा स्थान है वो निकल आएगा और उसके बाद 27 जून से 3 जुलाई तक प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज। 27 जून को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में जाके आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो डिप्लोमा है ये 3 वर्षीय कोर्स होता है और दसवीं उत्तीर्ण करके बच्चा सीधा इस फील्ड में आ सकता है, एक तो ये है, और उसके बाद वो सीधा इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है डिप्लोमा करने के बाद, एक फायदा ये है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम में चला गया या कॉमर्स में चला गया, अचानक से उसका मूड हो रहा है कि हमें तो इंजीनियरिंग में जाना था, तो अब वो सीधा इंजीनियरिंग में पहुंच नहीं सकता, उसके पास फिर एक ही तरीका है कि वो पहले डिप्लोमा में दसवीं के माध्यम से प्रवेश ले ले, और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद उसका सीधा सीधा द्वितीय वर्ष में अगर वो चाहे तो बीटेक में एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए वो डिप्लोमा के बाद ही एलिजिबल हो जाता है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हों वो यहाँ सागर में सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, चॉइस प्लिंग कराएं और महाविद्यालय में उपस्थित होकर 27 से 3 के बीच में 27 जून से 3 जुलाई के बीच में महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन और चॉइस प्लिंग की प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ेगा, उसके बाद प्रवेश हो जाएगा। धन्यवाद।
4: शिखर की ओर,
0: शिखर की ओर इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सागर जिले की बंडा तहसील में निर्माणाधीन उल्दन डैम बंडा सिंचाई परियोजना के बारे में। ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए विकास, समृद्धि और आशा की नई जीवन रेखा साबित होने जा रही है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं परियोजना प्रबंधक बंडा सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग सागर के कार्यपालन यंत्री श्री अनिरुद्ध आनंद जी।
5: सर जी, बुंदेलखंड का सतत विकास जारी है और इसी श्रृंखला में हम कहें तो समृद्धि की नई जीवन रेखा उल्दन डैम, इसका निर्माण भी जारी है जो लगभग अब समाप्ति की ओर है, तो इसके क्या क्या फायदे हैं और इस पूरी परियोजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
6: मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि यह धसान नदी पे हमारे सागर जिले में बंडा ब्लॉक में ग्राम उल्दन के पास निर्माणाधीन बांध है, जिसका निर्माण कार्य 95% पूर्ण हो गया है, जिसको हम 30 जून तक पूर्ण कर लेंगे। इस वर्ष हम बांध में जल भराव प्रारंभ करेंगे और जैसे ही बारिश होगी, वर्षा काल प्रारंभ होगा, तो बांध से जल भराव प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हम लोग इस साल पेयजल सुविधा 400 गांवों में नल जल योजना के तहत प्रारंभ करेंगे। ये योजना 80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए है, जिससे हम 4 ब्लॉक कवर कर रहे हैं, बंडा, शाहगढ़, बक्सवा, मालथोन और सागर। इन ब्लॉकों में हम कुल 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह बांध से हम लगभग 278 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारा 7,000 किलोमीटर के हम पाइप नेटवर्क, पाइप प्रणाली और दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के तहत हम लोग मतलब हर एक हेक्टेयर चक तक किसान के हम पानी पहुँचाएंगे, जिसमें किसान स्प्रिंकलर सिस्टम कनेक्ट करके स्वयं और इसको फव्वारे के द्वारा वो पूरे खेतों में नए क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से सब्जियां और चने और गेहूं आदि फसल ले सकेगा। इस क्षेत्र में लगभग कोई भी स्थायी सोर्स नहीं है जिससे कि वह सिंचाई कर सकते हैं। इस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम है, तो ये जो धसान नदी में डैम बन रहा है, इसका वर्ग किलोमीटर है 1500 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है, जिससे 313 MCM पानी, मिलियन घन मीटर पानी हमारा एकत्रित होगा, जिससे हम लोग पूरे 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई भी करेंगे, पेयजल भी करेंगे और इसके अलावा हम फिशरीज को भी पानी देंगे और हम एनवायरमेंटल नीचे डाउनस्ट्रीम में भी पानी रिलीज करेंगे, जिससे कि पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात पा सकेंगे।
5: और सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इससे रोजगार और पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा, क्या क्या फायदे होंगे?
6: जी, इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक इरीगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी बांध बने हैं, जैसे कि तवा डैम बना हुआ है और इसी तरीके से छतरपुर में भी जो बांध बने हुए हैं, कुटनी डैम बना हुआ है, वहाँ पे पर्यटन के रिसॉर्ट बने हुए हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रारंभ हो गई हैं। चूँकि इस क्षेत्र में बांध के डाउनस्ट्रीम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी भी घोषित हो गई है, जहाँ पे तेंदुए, चीते, इनका भविष्य में वन विभाग के माध्यम से यहाँ पे सफारी की भी कार्रवाई स्थापित की जाएगी, जिससे कि लोगों को पर्यटन और समृद्धि के लिए एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रीय व्यवस्था के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने सौरी इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए 1 MCM पानी प्रदाय कर रहे हैं। यहाँ पे मछली पालन, चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें मछली पालन की भी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे और जो मत्स्य विभाग है उनके माध्यम से जो सबसे पहले डूब प्रभावित जो किसान हैं, हमारे कृषक हैं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि सबसे पहले बांध में मछली पालन या अन्य जो भी पर्यटन व्यवस्थाएं हैं उनसे तहत जो भी रोज़गार हो रहे हैं सबसे पहले उनको ही इसमें हम लोग आमंत्रित करते हैं, जिससे कि वह आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करा सकें उनके लिए
5: जी। और शिक्षा

0: और अर्थव्यवस्था को भी इससे जोड़ा जा रहा है, तो वो किस तरह से कारगर होगी?
1: देखिए, इस विषय में मेरा निवेदन ये है कि बंडा में संदीपनी विद्यालय बना दिया गया है। ये पनारी पुनर्वास कॉलोनी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है और सरकार के माध्यम से बस सुविधा उपलब्ध करा के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि बंडा में ITI कॉलेज भी है, बंडा में पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए और बेहतर सुख सुविधाएं हैं। तो चूंकि गांव से एक ब्लॉक लेवल पे नगर परिषद और बड़ी जगहों पे बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि वो बेहतर एजुकेशन लेंगे, जिस तरीके से वो और आगे भी सफल बन सकेंगे।
2: बहुत धन्यवाद सर। आप
3: सागर के मोती।
0: सागर के मोती इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं अंजू मिश्रा जी, जो कि एक उम्दा चित्रकार हैं, बहुत अच्छे लंबे समय से पेंटिंग कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अंजू जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी परिवार की तरफ से।
4: थैंक यू सर।
0: तो अंजू जी, बताएं ये कब से आप कर रही हैं पेंटिंग और शुरुआत कैसे हुई?
4: जी सर, शौक तो बचपन से रहा, लेकिन कभी कोई ऐसी प्लेस नहीं मिल पाई क्योंकि पापा सर्विस में थे, तो हम लोग अधिकांश गांवों में ही हमारा समय जाता था। छोटी छोटी जगहों पे ही हम लोग रहते थे। फिर सागर में आके सर थे हमारे अरुण श्रीवास्तव सर, थोड़ा उनके डायरेक्शन में काम किया। फिर उसके बाद मैं ग्वालियर गई, वहाँ से मैंने MA की डिग्री ली। कि उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद तो 20-22 साल के बाद मैं फिर से पुनः सागर में आई, तो असरार सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि जब आपका रुझान इस तरफ है तो आप इसी में फोकस कीजिए। इस तरह मैं उनसे जुड़ गई। आज रंग ग्रुप की मैं एक मेंबर हूँ और मेरा उन्हीं के साथ ही अधिकांश एग्जीबिशन वगैरह में मेरा टाइम जाता है। जैसे अभी हम लोग ने फिलहाल में नजर वाक पे काम किया और टाइगर डे पे काम किया और महान संतों पे भी हम लोग काम करते हैं। एक के बाद एक ना कोई प्रोजेक्ट वर्क रहता है, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग उसी के तहत काम करते रहें।
0: तो पेंटिंग का क्षेत्र तो बड़ा व्यापक है, तो आपने किस किस तरह की पेंटिंग की?
4: ऑयल पेंटिंग है सर हम लोगों की, जैसे स्केचिंग है और फैब्रिक है, वाटर कलर है, एक्रिलिक कलर है, ऐसी तमाम विधाओं पे हम लोग काम करते हैं सर।
0: आपकी किस विधा में ज्यादा महारत है?
4: थोड़ा वाटर कलर में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है काम करना, और बाकी तो सभी हम करते हैं। जो जैसा लगता है कि ये चीज इस कलर पे इफेक्ट अच्छा आएगा इसका, उसी हिसाब से काम करते हैं सर।
0: कुछ माइलस्टोन चित्र आपके हों, कुछ खास पेंटिंग आपके हों, तो इस तरह की कोई पेंटिंग हो तो उनका जिक्र कीजिए।
4: हाँ सर, जैसे अभी हम लोगों ने नेचर से जुड़ी चीज़ें कुछ बनाई, तो एक्रिलिक कलर से ही बनाए, काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी आया। सर के मार्गदर्शन से मैंने अपनी पेंटिंग क्लास खुद सदर में अभी इसी महीने खोली है, तो उसमें थोड़ा रियलिस्टिक काम भी देखा थी।
0: अच्छा, एकेडमिक तौर पर आपने जो पेंटिंग की शिक्षा ली, तो वो कौन सी डिग्री थी और उसमें क्या क्या आपने सीखा?
4: तो मैंने MA फाइन आर्ट से किया है। हम लोगों को 3 सब्जेक्ट पे काम करना पड़ता था, कंपोजिशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और बाकी थ्योरिकल होता था, तो वही मैंने किया उस टाइम। तो
0: सीखने के बाद आपने सिखाया भी, सिखाते हुए और क्या आप सीखते हैं? आप क्या मानते हैं कि सिखाते हुए भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं पेंटिंग में और आपका अनुभव बढ़ता है?
4: जी सर, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि जब हम सिखाते हैं तो हमें अपनी कमियाँ खुद ही समझ में आने लगती हैं। अपने तरीके से काम करते हैं तो हमें अपनी कमियां समझ में नहीं आती, पर जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमें अपनी कमियां समझ में आती हैं कि अभी ये वर्क छूटा है इसमें, तो इसलिए सिखाना और सीखना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
0: अच्छा, सोशल मीडिया के दौर में और अब तो AI भी शामिल हो चुका है तकनीक के तौर पर, और बढ़ती हुई तकनीक के बीच में इस कला पर क्या असर पड़ा है?
4: सर, मोबाइल के जरिए इतना ध्यान आपका केंद्रित नहीं हो पाता जितना आप एक रिलैक्स होकर जब किसी पेंटिंग्स को करते हैं, और अपने आप में जो शांति महसूस होती है आपको, जितना अच्छा आपको लगता है, वो हम मोबाइल से या AI के माध्यम से वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। कोई भी विधा हो तो उसमें जितना रिलैक्स हम महसूस करते हैं वही पेंटिंग में महसूस होता है सर।
0: और कितनी मदद मिलती है, क्योंकि कुछ मदद भी मिलती है जो नई तकनीक आई है?
4: जैसे कि AI काफ़ी अच्छा है, AI से हम लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलता है। AI के प्रयोग के लिए हमें खुद का नॉलेज भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप में नॉलेज नहीं है या आप में जिज्ञासा नहीं उस चीज़ की, तो आप उससे क्या पूछेंगे।
0: और इसके अलावा आपके शौक क्या है?
4: म्यूजिक है सर मेरा शौक, काफी मुझे इंटरेस्ट है उसमें। गार्डनिंग भी मेरी बहुत अच्छी है, मेरे घर आएंगे आप कम से कम 400-500 पेड़ मिलेंगे आपको, जो मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखे हैं, किसी माली को नहीं लगाया है, खुद ही करती हूँ मैं।
0: और म्यूजिक आपने बताया तो किस तरह का म्यूजिक पसंद करती है?

0: म्यूजिक मुझे क्लासिकल भी पसंद है और भजन भी मुझे काफी पसंद है।
1: अंजू जी, आपके बच्चे भी हैं, परिवार है, आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में कैसे अपने शौक को समय दे पाती हैं और कैसे ये सब मेंटेन करती हैं?
0: हम लोग जॉइंट फैमिली में है, काफी हमारे घर में आना जाना और फैमिली में है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने जो शौक है उनमें कमी नहीं होने देती। उनके लिए मैं वक्त निकाल ही लेती हूँ, चाहे वो मेरे प्लांट हो, चाहे वो मेरी पेंटिंग्स हो, चाहे मेरा गाने का म्यूजिक का हो, मैं सबके लिए टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल ही लेती हूँ। एकदम से जो आप बोर हो जाते हैं एक ही एक काम कर करके, अपने घर में एक ही तरीके से काम करके, उसमें बहुत राहत मिलती है, बहुत सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है हाँ, दो घंटे आप है ना अपना घर परिवार सब कुछ भूल के केवल उसी के होके रह जाते हैं, जिसमें जिस विधा में आप जाना चाहते हैं, किसी भी चीज से जुड़े, आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा।
1: बहुत धन्यवाद।

0: वाह भैया वाह वाह, गान तान चल रहा है ना?
1: जी भैया जी।
0: तो का बजा रहे थे, जो का सुना रहे थे?
1: जो एक अपने काया के ऊपर भजन है।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: का नाम है अपनो?
1: आशीष रजक।
0: तो कब से का बजा रहे?
1: जो बचपन से शौक है हमें, छोटे हते हाँ। 8-9 साल की हाँ। जब से शौक है।
0: तो कोई को देख सुन के शौक भाव के कोई से सीखो तुमने का?
1: नहीं, सीखो कोई से नहीं है, भगवान की परमात्मा की ऐसी कृपा है के सब ऑटोमेटिक अपन आओ है, सब
0: सुनत तो रहे हुई हो।
1: हाँ, फिर अब धीरे धीरे सीखत रहे, सुनत रहे अब, और आगे भजनों में कीर्तन में बैठत रहे।
0: हाँ, मतलब मंडलियों से जुड़ गए। कहा
1: मंडलियों से जुड़ी हैं, और अब मतलब ऐसी के सुंदरकांड मंडल पीपरा जो है उनसे जुड़े हैं, और बालाजी पे अपने मंगल शनिवार कार्यक्रम होते हैं, वो में जाते हैं।
0: तो आशीष भैया गात तो हो
1: जी,
0: बजात भी हो।
1: हाँ।
0: तो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेता आप?
1: बजा देखो, मेन तो हमारी कहानी ढोलक, जो शुरू से जाना शौक हमारा ढोलक को रहो है।
0: अच्छा।
1: और फिर हारमोनियम भी ले ली थी अपन ने, तो धीरे धीरे बजात रहे, सीखत रहे, जा भी अपन घर ही सीख गए।
0: अच्छा।
1: और बैंजो भी ले ली है, सो बैंजो भी थोड़ी थोड़ी बजात रहे थे।
0: तो हर फन मौला कहा है फिर?
1: हाँ हाँ, परमात्मा की कृपा है सब।
0: तो प्रोग्राम भी करो थो कछु का,
1: जैसे मोहल्ला में है, एक दो अपने रिश्तेदारों में, खास आदमों में।
0: तो ढोलक में तो बजात समय तो बहुत सी तालें बजात है आदमी, कौन कौन सी तालें बजा ली?
1: दादरा है, कहरबा है, और ये बुंदेली अपने राय लोक गीत पैटर्न के हैं, ये सब बजा ली। अच्छा। भक्त जो भूत हैं वो की बजा ली थे, मतलब बुंदेली में जो रेत है सब बजा ली थे।
0: मतलब जैसे जितने तालों के जो नाम बताए और जो जैसे लोकगीत है भजन है, तो जौन सी टाइप की बजोटियों में बजत की कहाई बस सब बजा ली, तो मतलब उनको संगत अच्छे से कर ली थी।
1: हाँ हाँ, सब बजा ली थे।
0: तो आशीष भैया ढोलक की कोई बानगी हो जाए?
1: हो जाए, हो जाए। कहरवा सुना दे रहे?
0: हाँ।
1: और दादरा सुना दे?
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।

0: पेंटिंग है।
1: अच्छा।
0: जैसे शादी ब्याह में लिखते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं, साइन बोर्ड है अपने,
2: उनमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा तो जो साइन बोर्ड वगैरह लिखो जाते हैं उनमें अच्छी लिखावट को बड़ो महत्व है?
0: तो मैं अच्छी लिखावट के लाने पहले तो जो बेस रेत है, बेस बनाओ जाते है, जैसे बोर्ड है अच्छी सफाई से पहले तो पुत जाए वो।
1: अच्छा।
0: तो बेस बन गो, फिर वो के बाद लिखाई शुरू होते, जैसे लिखाई भी शुरू करो तो धागा डालो, धागा डाल के साथ साथ अक्षरों को भी ध्यान दो कौन अक्षर कैसो है वो हिसाब से बन जाता है।
2: अच्छा, दीवार पे भी लेखन करते हुए?
0: हाँ, दीवार पे भी करते हैं, जैसे शादी ब्याह में पेंटिंग होते है वो में भी करते हैं।
2: लेखन के साथ साथ सजावट को भी काम कर देते?
0: हाँ, सजावट को काम,
2: थोड़ी बहुत चित्रकारी भी, मतलब?
0: हाँ, चित्रकारी भी, अब जैसे गणेश जी तो बनते ही है शादी ब्याह में, तो गणेश जी भी बना देते हैं, और अगर कोई कहने लगा तो फिर राधा कृष्ण भी बना देते हैं।
2: तो ऑयल पेंटिंग से करते हुए जो सब काम
0: जो है फ्लोरोसेंट कहा थे।
1: अच्छा।
0: एक कलर उन्हीं से हुए थे जो शादी ब्याह की पेंटिंग, और जो बोर्ड लिखे जाते हैं वे पेंट से लिखे जाते हैं, और इनमें जो शादी ब्याह में जो कलर यूज होते हैं इनमें कलर बनाए बहुत दिक्कत जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: कैसे?
0: अगर पानी में अपन ने घोर दो बेकार हो जाता कलर।
1: अच्छा।
0: पहले गोंद में घुरत है वो।
1: अच्छा।
0: हाँ, गोंद में घुर गो फिर उसके बाद पानी मिलत है, अगर पानी संगे मिला तो खराब हो जाए।
2: हाँ। कलर तैयार करने की जब विधि?
0: हाँ, जब विधि है।
2: तो जो लेखन और हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में करते हो?
0: हाँ, हिंदी इंग्लिश, अब तो अब पेंटिंग को काम करा था कोई कहने लगो इंग्लिश में तो अपन वो भी कर देते।
2: हाँ, मतलब मैटर लिख के दे दो। हाँ, तो उनकी नकल। हाँ, फिर कर दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत धन्यवाद आपको आशीष जी।
0: जी जी, धन्यवाद।
3: इस सप्ताह चर्चा में,
4: इस सप्ताह चर्चा में इस सेगमेंट में आज बात करते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल के इस महाकुंभ का आगाज गुरुवार को मैक्सिको के 80,000 की क्षमता वाले अजटेका स्टेडियम में रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ। शुरुआत मैक्सिकन डांस और थिएटर के साथ हुई, जिसमें मैक्सिको की संस्कृति की झलक दिखाई दी। मैक्सिको रिकॉर्ड तीसरी बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। खास रोमांच अर्जेंटीना के मेसी और पुर्तगाल के रोनाल्डो एक दूसरे के सामने होंगे। 39 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में फॉर्मेट के हिसाब से 104 मैच से मिलेगा विजेता। 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा है। हर टीम तीन तीन मैच खेलेगी। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे बेहतरीन टीमें नॉकआउट में जाएंगी, और फाइनल में हाफ टाइम के दौरान पहली बार शो होगा। इसे कोल्ड प्ले के दिग्गज क्रिस मार्टिन ने तैयार किया है, जिसमें शकीरा, मेडोना और BTS जैसी हस्तियां परफॉर्म करेंगी। गागर में सागर इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के इस अंक में बस इतना ही। इस पत्रिका का संयोजन और प्रस्तुति थी दीपक निषाद की, और अब दीजिए अनुमति सुमित दुबे को। नमस्कार।
3: गागर में सागर।
5: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर, प्रस्तुति थी दीपक निषाद की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। सुबह के 7:50 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है विश्व रक्तदाता दिवस, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक जैन, CMO डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, इनसे बातचीत करेंगे दीपक निषाद। यह है इस भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद, और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक बेहद खास विषय के ऊपर। आज 14 जून है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और रक्तदान को लेकर के तमाम भ्रांतियां जो लोगों के भीतर है, तमाम प्रश्न रक्तदान से पहले जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को, उन भ्रांतियों को आज हम लेने का प्रयास करेंगे इस भेंटवार्ता में। और जवाब देने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान आप हैं, डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन। आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हुए संक्षेप में इस भेंटवार्ता को करेंगे। और पहला प्रश्न जो आमतौर पर किसी भी रक्तदाता के मन में आता है वो ये है कि क्या रक्तदान करना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है?
1: नहीं, रक्तदान एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बेहद सुरक्षित है। शरीर एक से दो दिन में तरल भाग यानी रक्त का प्लाज्मा और 3 से 4 सप्ताह में लाल रक्त कणिकाओं की भरपाई कर लेता है।
6: एक और आम प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आता है कि रक्तदान करने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा?
1: यह हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर में आयरन की अधिकता को संतुलित करता है, नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है, मानसिक संतोष और सामाजिक योगदान की भावना को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात और लाभ, निशुल्क स्वास्थ्य जांच का अवसर मिलता है।
6: रक्तदान को लेकर के एक जो बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है, खासकर महिलाओं को लेकर के, कि क्या महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं?
1: जी हाँ, यदि महिला की हीमोग्लोबिन मात्रा और स्वास्थ्य सामान्य है तो वह रक्तदान कर सकती है। यह भ्रांति है कि महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए।
6: एक और जो बहुत बड़ी चिंता लोगों के दिमाग में होती है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब?
1: नहीं, रक्तदान से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। थोड़ी देर आराम करने और तरल पदार्थ लेने के बाद व्यक्ति सामान्य रूप से अपना कार्य कर सकता है।
6: एक बार रक्तदान करने के बाद क्या कोई व्यक्ति बार बार रक्तदान कर सकता है, या 2 रक्तदान के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए?
1: जी हाँ, पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं यदि वे स्वस्थ हैं।
6: रक्तदान को लेकर के एक बड़ी दुविधा ये भी होती है कि इससे संक्रमण फैल सकता है।
1: नहीं, यदि रक्तदान प्रमाणित और स्वच्छ केंद्र पर किया जाए, जहां पर एक ही बार में इस्तेमाल होने वाली सुइयों और बैग का प्रयोग होता हो, तो किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैलता।
6: एक रक्तदाता जो रक्तदान करने जा रहा है, रक्तदान से पहले किन बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए?
1: पर्याप्त नींद लें, हल्का भोजन करें, खाली पेट ना जाएं, धूम्रपान, शराब या अन्य किसी प्रकार नशे से बचें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, यदि कोई बीमारी हो या किसी प्रकार की दवा चल रही हो तो डॉक्टर को अवश्य बताएं।
6: ये तो हमने जाना कि महिला पुरुष दोनों रक्तदान कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कौन लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं?
1: ऐसे लोग जो 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम हो, एनीमिया, मधुमेह यानी डायबिटीज, संक्रमण, हाल ही में हुई सर्जरी या कुछ दवाएं लेने वाले लोग, एड्स यानी HIV, हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित व्यक्ति।
6: एक और प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या रक्तदान करने से यौन क्षमता या प्रजनन क्षमता पर फर्क पड़ता है?
1: जी नहीं, यह पूरी तरह से भ्रांति है। रक्तदान का यौन क्षमता या प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
6: रक्तदान को लेकर के इतनी सारी बातें होती हैं, इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो एक बहुत बुनियादी सवाल कि रक्तदान करना क्यों जरूरी है?
1: देखिए, हर 2 सेकंड में भारत में किसी को रक्त की आवश्यकता होती है। दुर्घटनाओं की स्थिति, सर्जरी, थैलेसीमिया, कैंसर, मात्र शिशु देखभाल आदि के लिए रक्त आवश्यक है। रक्त कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, केवल इंसान ही इसे दे सकता है।
6: आखिरी में चलते चलते डॉक्टर साहब, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आपसे हम हमारे सुनने वालों के लिए संदेश लेना चाहेंगे कि रक्तदान क्यों जरूरी है।
1: मेरा संदेश है कि रक्तदान महादान है, यह एक जीवन दान है। आज आप एक रक्त देकर समाज को संगठित करते हैं और स्वस्थ होने की संकल्पना को बढ़ावा देते हैं। आइए हम इस पुण्य कार्य में सहभागी बने, रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से अच्छा लगता है।
6: जी हाँ, करके देखिए, अच्छा लगता है। मौका दीजिए, अपने खून को किसी की रगों में बहने का ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। डॉक्टर अभिषेक जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से हमारे बीच आए और आपने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान के ऊपर तमाम जरूरी बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: ये थी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भेंट वार्ता, जिसमें डॉक्टर अभिषेक जैन से दीपक निषाद ने बातचीत की।
7: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
8: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
9: रुक जा बुद्धू।
10: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
8: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी के ही सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात रिले करेंगे दिल्ली से बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

0: के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है।

0: चाहे वह सुधार, जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: स्पेशली द कंट्रीज लाइक आर्स।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: राजेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत में। और यह पहला लोकगीत कार्यक्रम का हरगोविंद विश्व और लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाजों में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये लोकगीत राम सिंह राय की आवाज में।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और अब सुरेश चंद्र तिवारी से आइए सुनते हैं ये लोकगीत कार्यक्रम के अंत में।

देवाए भैया होते रात खेल खेल हम की खा सुनाए भैया होते रात खेल खेल अरे माए के खरो को।

सुरेश चंद्र तिवारी के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खासकर बच्चों के लिए संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड करापुर जिला सागर।
1: जय हिंद।
0: बच्चों जय हिंद। उड़ान बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के हर मोड़ पर नया आसमान बाकी है। हमारे सभी नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आपके साथ है आपकी सुनंदा दीदी और दीदी की ओर से सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत प्यार और मनुहार। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। मस्ती और खुशियों से भरा होता है प्यारा बाल धमाल। हर बच्चे के सपनों को मिलती है एक नई उड़ान। हाँ बच्चों, हमारी यह बाल सभा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ऐसा मंच है जहाँ हर बच्चे के सपनों को उड़ान मिलती है। देश की सुंदरता और विविधता को हम करीब से देखते हैं। झांकी हिंदुस्तान की क्रम में और रेडियो की पाठशाला बड़ी ज्ञानवर्धक बातें इसमें हम आपसे करते हैं। गीत किस्से कहानियों के साथ ही होती है मीठी सी मुलाकात नन्हे साथियों से और वो क्रम होता है बच्चों बाल मंच।
2: ये कह रहा है बच्चों का शो
3: बाल मंच।
0: सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट म्यूजिक डांस ड्रामा कंप्यूटर क्लासेस समृद्ध लाइब्रेरी सुरक्षित पर्यावरण के साथ खेल सुविधा CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की विशेष सुरक्षा।

0: नाश्ता एवं बस सुविधा। प्रवेश प्रारंभ, जल्दी संपर्क करें 7566432100। लीजिए बच्चों, नन्ही सी मुस्कान लिए आ गए ये प्यारे बच्चे और हम मुलाकात कर लेते हैं और जान लेते हैं इनसे प्यारी प्यारी बातें। सर्वप्रथम हमारे बीच आ चुकी हैं ये नन्ही सी गुड़िया।
1: दीदी मेरा नाम खुशी सूर्यवंशी है। दीदी मैं कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ।
0: आप अपने साथियों को क्या लेकर आई हैं?
1: दीदी मैं खेलों के महत्व पर एक कविता सुनाना चाहती
0: हूँ। चलिए बताइए, आपको कौन कौन से खेल पसंद है?
1: दीदी हमें अपने पारंपरिक खेल बहुत पसंद।
0: चलिए अब हम आपसे आपकी प्यारी सी रचना सुन लेते हैं।
1: नमस्ते, खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक बात बतलाऊं। खेल खेल में सारे बच्चे सेहत खूब बनाते, उछल कूद कर मस्ती करते, जीवन का सुख पाते। यह आनंद बनी पैसों का खेलों से ही पाते। खेल खेलने से ही बच्चों खेल भावना आती, खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बनाती। हार जीत से ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते, खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते। धन्यवाद।
0: हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात कर लेते हैं एक और साथी से।
2: दीदी मेरा नाम सौम्या ठाकुर है।
0: सौम्या, किस कक्षा में अध्ययन कर रही हैं अभी आप?
2: दीदी हम 5वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं।
0: तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी?
2: बहुत अच्छी। दीदी हम मम्मी के साथ भी काम कराते हैं।
0: क्यों बच्चों, आप भी तो करते होंगे ना काम?
3: जी दीदी।
2: मम्मी जो काम करती हैं हम पूरी भागीदारी निभाते हैं।
0: यही तो हम सुनना चाहते थे, काम करने की भी आपके मन में एक जिद होना चाहिए, तभी तो आप कुछ सीखेंगे, है ना?
2: जी दीदी।
0: चलिए आप अपनी कविता अपने साथियों को सुनाइए।
2: एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय, वह देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज में वे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का श्रोमणि, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी सेवक चपू जिसके भारत सेवाए दू, वह देश कौन सा है? धन्यवाद।
0: आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का वर्णन इन्होंने कर दिया। आपका धन्यवाद देते हुए मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से। सिद्धि तिवारी अब हमारे बीच हैं अपनी एक कविता के साथ। किस क्लास में पढ़ती हो सिद्धि?
4: 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
0: क्यों भाई, कविता सुना रही हैं आप?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों सुना रही हैं?
4: दीदी कविता करना हमारा शौक है, हम अपना हुनर बाल मंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कविता का विषय है परीक्षा का डर। परीक्षा का आया है समय, चल रे भैया अब तो पढ़ ले, कहीं छूटा एक भी सवाल, मम्मी के होंगे हजार बवाल। पढ़ ले जल्दी पढ़ ले, सुबह समय ना मिल पाएगा, पंख लगाकर उड़ जाएगा बू, वापस फिर ना आएगा। एक एक प्रश्न लगे हमें पहाड़ समान, सोचो परीक्षा में करने होंगे हमें 16 सवाल। नाम भगवान का लेके चले परीक्षा भवन की ओर, जाकर बैठे ही थे तो घंटा बज गया जोर, घड़ी की सुई घूमी और संग घूमे हम भी, समय का पता चलाना हमको और फिर बज गया घंटा घोर। क्या रे बुरा हाल हुआ रे, हाय परीक्षा क्यों आई रे। धन्यवाद।
0: तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुलाकात करते हैं एक और साथी से। बड़ी नन्ही सी बिटिया हमारे बीच आ चुकी है भाई, क्या नाम है आपका?
5: दीदी आरोही नाम है मेरा, कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ।
0: आरोही नाम है तो आपने संगीत के आरोह और अवरोह सीखे कि नहीं?
5: हाँ दीदी सीखे हैं।
0: और इसी के साथ अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने साथियों को आज क्या सुना रही हैं आप?
5: मोबाइल की लत।
0: आपको तो नहीं है मोबाइल की लत?
5: दीदी नहीं है, व्यर्थ नहीं चलाते हैं।
0: हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या जानकारी देना चाह रही हैं अपने साथियों को?
5: हरदम ना पकड़े रहो मोबाइल का पल्ला, आओ खेलने क्यों और मचाए खूब हल्ला, पढ़ने के साथ साथ खेलना जरूरी, टीवी और मोबाइल से बनाओ थोड़ी दूरी, वरना बनाइए लत हम खुद ने ठल्ला, आओ खेलने क्यों और मचाए खूब हल्ला। फूलों से सीखे हम हंसना और मुस्काना, चिड़ियों से सीखे हम मीठा मीठा गाना, झूमे नाचे गाए सारा हिल जाए मोहल्ला, आओ खेलने क्यों और मचाए खूब हल्ला। मीडिया शिक्षा की क्लास में हम जाएं, सीखे जो वहाँ से हम सबको सिखाएं। मैं आकाशवाणी को धन्यवाद कहती हूँ।
0: चलिए हम आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरोही, और मुलाकात कर लेते हैं आपके एक और साथी से।
3: मेरा नाम अनमोल तिवारी है, मैं

0: कक्षा छठवीं में पढ़ता हूँ।
1: तो इतने आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं?
0: नहीं दीदी, हम तो बहुत खुश हैं आज आकर।
1: तो जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। बच्चों यूं ही बाल मंच में भी मुस्कुराते हुए आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आज अपने साथियों के लिए क्या सुनाने चाह रहे हैं आप?
0: बहुत जरूरी होती शिक्षा। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देती और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देते। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम, कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा को ही पाकर बनते हैं हम, नेता, अफसर, वैज्ञानिक, शिक्षक, मंत्री, व्यापारी और चिकित्सक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। धन्यवाद।
1: किसी छोटे से बच्चे को आप देखते हैं कि वो बाल मजदूरी कर रहा है, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं?
0: दीदी, हम उसे प्रेरित करते हैं कि वो अपने इस बचपन को इस तरह व्यर्थ ना करे, शिक्षित होकर देश का भावी नागरिक बने।
1: चलिए मुलाकात कर लेते हैं आपके एक और साथी से। क्या नाम है आपका?
2: शुभ लोधी। दीदी मैं कक्षा 5 ही पढ़ता हूँ।
1: चलिए तो सुन लेते हैं आपकी कविता।
2: कविता का नाम है मेरा वतन। मेरा अक्ष भी वो, मेरी छाया भी वो, मेरा हरदम भी वो, मेरा सरमाया भी वो, मेरी गीता भी वो, मेरी कुरान भी वो, मेरी पूजा भी वो, मेरी अजान भी वो, मेरा सुकून भी वो, मेरा जुनून भी वो, मेरा होश ही वो, मेरा जोश ही वो। इस जहां में उसका कोई नहीं, मेरे रहवावे हस्ती पे छाया है जो। कोई पूछे कौन है तेरा रह गुजर, मैं कहता हूँ मेरा वतन मेरा हिंदुस्तान है।
1: तो मिलकर बोलिए बच्चों, वंदे
3: मातरम।
1: आप अपने कर्तव्यों के प्रति भी आप कर्मठ रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से।
2: धन्यवाद दीदी।
1: क्या नाम है बेटा आपका?
4: दीदी मेरा नाम हर्षिता दुबे है, मैं छठवी कक्षा में हूँ।
1: कैसा लग रहा है बाल मंच में आना है, इतनी धूप है, क्या विचार आपके मन में आए?
4: हाँ दीदी, लग तो रहा था कि बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन हमें उत्साह था आने का यहाँ पर, क्योंकि हमारी मुलाकात बहुत से साथियों से हो जाती है।
1: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी इस कविता के साथ।
4: कहते हैं कि ईश्वर जब आपके आंगन में शौर्य को, प्रतिभा को, यश को, सामर्थ्य को और धन को उतारता है, तब बेटों को जन्म देता है। और जब ईश्वर आपके आंगन में दया को, करुणा को, क्षमा को, तपस्या को और उपासना को उतारता है, तब बेटियों को जन्म देता है। बेटियां बचाना जरूरी क्यों है, इस पर कुछ पंक्तियां। मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सी, नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई दफ्न राज को खोलेगा, तो अंतर में कंपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ पहाड़ हो जाएगा, मन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। हमारे देश की बेटियों ने हर क्षेत्र में इतिहास रचा है, स्वरलता दे रही है जिसमें, विश्पीति मीराबाई है, पद्मिनी करे जौहर व्रत को, बलिदानी पन्ना धाय है, लक्ष्मीबाई जीजाबाई हैं उदाहरण बलिदानों के, चढ़सिंह शिखर पर क्षेत्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है, बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है। कल पाएगा जो बेटी को, वो लोग कैसे कल पाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। धन्यवाद।
1: आप भी लक्ष्य को प्राप्त करें और मुकाम हासिल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मुलाकात करते हैं।
5: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं आराध्या ठाकुर कक्षा 8वीं की छात्रा आज शिक्षा के महत्व विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। हम रोज स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, कभी कभी तो डांट भी खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब क्यों जरूरी है? शिक्षा हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो धीरे धीरे हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ को भी विकसित करता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें नई नई बातें पता चलती हैं, हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और सबसे खास बात, शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे बिना डर के बोल पाते हैं। शिक्षा हमें सिखाती है गलती से सीखना, हार ना मानना और आगे बढ़ते रहना। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने शिक्षा के बल पर अपने सपनों को साकार किया। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा ही सफलता की असली कुंजी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, शिक्षा को बोझ ना समझें, बल्कि इसे अपना सबसे अच्छा साथी बनाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो शक्ति है जो हमारे आज को बेहतर और भविष्य को उज्जवल बनाती है। धन्यवाद।
1: हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने संदेश दिया कि शिक्षा कितनी जरूरी है, हमें आत्मविश्वासी भी बनाती है और जागरूक भी बनाती है। अब हम एक और साथी से मुलाकात करते हैं।
3: दीदी, हमारा नाम प्रिया शुक्ला है।
1: तो किसकी प्रिय हैं आप?
3: हम अपने माता पिता के प्रिय हैं।
1: तो किस क्लास में पढ़ती हैं प्रिया?
3: सातवीं कक्षा में पढ़ती।
1: आज आप साथियों के लिए क्या लेकर आई हैं?
3: नमस्ते आदरणीय श्रोता बंधु और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके सामने देश प्रेम विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। देश प्रेम का अर्थ केवल अपने देश से प्यार करना ही नहीं है, बल्कि उसके सम्मान, संस्कृति और एकता की रक्षा करना भी है। सच्चा देश प्रेमी वही होता है जो अपने देश की प्रगति और विकास के लिए ईमानदारी से काम करता है। हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई महान वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने हमें सिखाया कि देश के लिए त्याग और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं तो हमारा देश निश्चित ही प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में झलकना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: इसी के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कंप्यूटर क्लासेस, समृद्ध लाइब्रेरी, सुरक्षित पर्यावरण के साथ खेल सुविधा, CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की विशेष सुरक्षा एवं बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। हमारे बीच आ चुकी हैं ये
6: दीदी। मेरा नाम वैभवी दांगी है।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं वैभवी?
6: दीदी हम सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं।
1: क्या अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ती हैं आप?
6: जी दीदी।
1: कोई श्लोक आता है आपको संस्कृत का?
6: वयम वीरा वयम धीरा वयम सर्वत निर्भया चरामु प्रचलामु निरंतरम।
1: पहले से क्या तैयार करके लाई थी
6: दीदी? हम एक कविता लाए थे। रेडियो सुनने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं के लिए नमस्ते। वृक्षारोपण पेड़ लगाना केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बचाने की अनिवार्य आवश्यकता है। वृक्षों को धरती का हरा सोना और फेफड़े कहा जाता है, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, छाया और फल प्रदान करते हैं। वैभवी कहती बार बार पेड़ लगाओ, सौ सौ बार। पेड़ हमें देता है जीवन छोड़कर बार बार ऑक्सीजन। प्रदूषण दूर भगाते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं। पेड़ हमें देता है फल, पेड़ों के कारण आता है कल। आओ मिलकर खाएं कसम, पेड़ लगाएंगे मिलकर हम।
1: बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई। और पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं?
6: दीदी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
1: चलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात करते हैं एक और साथी से। क्या सुना रही हैं अपने साथियों को आप?
7: मैं पानी जीवन की अनमोल धरोहर है।
1: तो उससे पहले अपना नाम बताइए अपने साथियों को।
7: मेरा नाम सौम्या चौरसिया है, मैं कक्षा आठवीं में पढ़ती हूँ।
1: और क्या क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ाई के अलावा?
7: डांस अच्छा लगता है। हमारे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य बधाई, उसका तो क्या कहना दीदी, पांव थिरक जाते हैं।
1: चलिए आप भी लगता है कि थिरक रही है, लेकिन इसी थिरकन के साथ हम आपके विचार भी जान लेते हैं।
7: मेरा विषय है पानी जीवन की अनमोल धरोहर। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन क्या हम इस बात की कद्र करते हैं? सोचिए अगर एक दिन हमारे घर में पानी ना आए, ना पीने के लिए, ना नहाने के लिए, ना ही खाना बनाने के लिए, तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग रोज कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं और हम अक्सर नल खुला छोड़ देते हैं, बिना सोचे समझे पानी बहा देते हैं। पानी सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, ये प्रकृति का अनमोल उपहार है। अगर हमने इसे बचाया नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ प्यास ही मिलेगी। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, पानी को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद देते हुए मुलाकात करते हैं एक और साथी से।
8: जी दीदी, मेरा नाम वैष्णवी राय है।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं वैष्णवी?
8: मैं कक्षा आठवीं में पढ़ती हूँ।
1: तो वैष्णवी आज अपने साथियों के लिए क्या सुनाने जा रही हैं?
8: कदम मिलाकर चलना होगा।
1: चलिए सुनाइए।
8: बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर वर्षे यदि ज्वलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते

0: रास्ते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाश रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजारे में अंधकार में, कलकहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा,
1: कदम मिलाकर चलना होगा।
0: दीदी, इसके रचयिता हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
2: हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात करते हैं एक और साथी से। चलिए, नाम बताइए अपना।
3: मेरा नाम खुशी भदौरिया है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ।
2: चलिए खुशी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: आदरणीय आकाशवाणी के श्रोता बंधु, मेरे प्रिय साथियों और उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा विषय है भारत का सनातनी त्योहार नवरात्रि और महिला सशक्तिकरण। नवरात्रि का पर्व हमें नारी शक्ति की महिमा का संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की प्रेरणा भी है। हम देवी की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम वास्तविक जीवन में भी महिलाओं का सम्मान करें। यदि हम सच में नवरात्रि का महत्व समझना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास की महिलाओं को बराबरी का अवसर देना होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और स्वयं फैसले लेने की स्वतंत्रता देना। जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज मजबूत हो जाता है। इसलिए नवरात्रि हमें केवल पूजा करने का नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने का संदेश देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम मिल लेते हैं एक और साथी से।
4: दीदी जी, मेरा नाम वैष्णवी राठौर है। दीदी जी, मैं क्लास 8th से हूँ।
2: तो वैष्णवी जी, आप क्या सुना रही हैं आज अपने साथियों को?
4: वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, द पोएम बाय राइटिंग रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू।
2: चलिए भाई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब हम मिलवाते हैं आपको सृष्टि पटेल से। सृष्टि, क्या लेकर आई है अपने साथियों को?
5: दीदी, मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ एनवायरनमेंट के बारे में।
2: हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: दीदी, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ।
2: क्या संदेश दे रही हैं पर्यावरण के बारे में?
5: द एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट द ट्रीज एंड रिवर्स अराउंड अस, इट्स अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल that grows our food. However, we are currently facing a grave crisis. Pollution, deforestation, and the reckless use of plastics are destroying our planet. The rapid urbanization and increasing carbon footprint have brought us to a point where global warming is a reality, not just a threat. But it is not too late. The solution lies in our hands. Every small step counts. Planting trees is the simplest and most effective way to clean the air. We must say no to single use of plastics and opt for eco-friendly alternatives. Saving water and electricity in our homes is a direct contribution to preserving natural resources. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
2: बहुत ही अच्छी जानकारी दी पर्यावरण के बारे में और इन्होंने तो सभी बता दिया है बच्चों कि हमें पर्यावरण को किस तरह से स्वस्थ रखना है और स्वच्छ रखना है। तो चलिए अब हम एक और साथी से मुलाकात करते हैं।
6: दीदी, मेरा नाम राम मिश्रा है।
2: राम, किस कक्षा में पढ़ते हैं राम?
6: मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
2: आपका नाम तो बड़ा अच्छा है राम। जी, तो आप अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं कि नहीं?
6: हाँ दीदी।
2: अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ना?
6: हाँ दीदी।
2: अब हम आपसे जान लेते हैं आप अपने साथियों के लिए आज क्या सुना रहे हैं।
6: दीदी, मैं सामाजिक समरसता पर एक कविता सुना।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: जाति पाति की दीवारें तोड़े मन से मन का नाता जोड़े, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, एक ही उपवन हमने सींचा। भेदभाव का कुहासा छट जाए, कड़वा हट सब दिल की मिट जाए, समरसता का दीप जलाए, उपनत्व की गंगा बहाए। विविध रंग पर एक ही माला, प्रेम ही है बस एक उजाला, हाथ थाम कर साथ चले हम, नए भारत का भाग्य लिखे हम। धन्यवाद।
2: सामाजिक समरसता पर बहुत ही प्यारी आपने कविता सुनाई, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आज आपको बाल मंच में?
1: बहुत अच्छा।
2: तो इसी तरह आप गाते मुस्कुराते बाल मंच में आते रहिएगा। हम आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: दीदी हमारी ओर से भी आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद के साथ हो जाएं जोरदार तालियां बच्चों। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7520644। बाल मंच में नन्हे साथी छम आए दम आए, गीत कविता स्टोरी से सबका मन भरमाए। देखा बच्चों, बच्चों के हुनर ने अपने साथ साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन कर दिया है ना। चलिए तो अब हम भी चलते हैं। अरे भाई हम भी चलते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100।

सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। चलिए बच्चों अब हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, जिस तरह गीत का समापन हो गया ना बच्चों, उसी तरह आपकी छुट्टियां भी अब विदा ले रही हैं और दूसरी ओर स्कूल की घंटियां हमारा इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है छुट्टियों में आप सभी बच्चे बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना, बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा, यानी खूब बाल धमाल भी हुआ होगा। पर बच्चों अब नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ स्कूल भी जाना है। बाल धमाल तो आपको बहुत खुश रहना भी सिखाता है ना, और जो बच्चे खुश रहते हैं ना वो सीखते भी बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चों, जो रेडियो की पाठशाला है ना हमारी, उससे भी तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है ना, किसी चीज़ का महत्व पता चलता है। जैसे गर्मी के दिनों में पानी हमारे शरीर को ठंडक देकर कमजोरी और पानी की कमी से बचाता है, और पेड़ पौधों की छाया हमें तेज धूप और गर्मी से राहत देती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और ताजगी से भरा होता है। चलिए अब आपको अवगत कराते हैं अपने देश की कुछ अनोखी पर ज्ञानवर्धक बातों से। उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक संदेश। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। हाँ तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे देश की कुछ अनोखी पर ज्ञानवर्धक बात, है ना। हाँ, जानते हैं आप, मेघालय में कुछ स्कूलों में गर्मियों के बजाय ज़्यादा बारिश या सर्दी के समय छुट्टियां दी जाती हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई का समय मौसम के अनुरूप बदला जाता है। और साथ ही ये भी जानकारी रखिए बच्चों की, भारत के कुछ आवासीय और सैनिक स्कूल में लंबी छुट्टियाँ नहीं बल्कि साल में छोटी छोटी छुट्टियाँ मिलती रहती हैं। अनुशासन और प्रशिक्षण के कारण छुट्टियों का समय कम रहता है। अब बच्चों आइए दिवस की चर्चा भी हम आपसे कर लेते हैं। आज 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं और यह दिवस लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने और जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने की प्रेरणा देता है। अब देखिए ना बच्चों, समय हो चला है तो बस इतना ही कहेंगे कि सीख नई हर दिन मिले, सेवा का भाव महान, अच्छे कर्मों की राह चलें, यही है सच्ची पहचान। इसी के साथ बच्चों अपनी सुनंदा दीदी को आज्ञा दीजिए, लेकिन उससे पहले पता भी नोट कर लीजिए ताकि आप अपने विचार हमें पत्रों के माध्यम से भेज सकें। कार्यक्रम बाल सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र सागर, और बच्चों पिन कोड है 470001। इसी के साथ बच्चों अपनी सुनंदा दीदी के साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल सभा। प्रायोजित कार्यक्रम बाल सभा अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। सुबह के 9 बजने को है। अगला प्रसारण मुंबई से होगा कुछ ही देर में।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं ऋषिल वर्गीज की आवाज में जुबान फिल्म का गीत। वरुण ग्रोवर और आशु पाठक ने इस गीत को लिखा है, आशु पाठक का संगीत।

dum da dum da dum da dum da.

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए सुनिए दीप मणि और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का एक गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मीत ब्रोज का।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप ABO की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

0: ये पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना, जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

थे। संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया।

0: दौरान उन्होंने खाद्य वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था कमल खसका। वाचन
2: अब आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।

0: फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
2: जी सर नमस्कार।
1: अपना नाम बताएं।
2: सत्यपाल मोदी, ग्राम खेड़िया, तहसील बंडा, जिला।
1: अच्छा अच्छा, सत्यपाल भाई हमें ये बताएं कि जो यातायात होता है उसमें अगर हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इनसे हाँ, तो आपका क्या कहना है?
2: पैसे तो यही है कि अगर अच्छे से चले तो कैसे दुर्घटना हो जाएगी, नशा ना करें।
1: हाँ हाँ,
2: मोबाइल पे बात ना करें।
1: बिल्कुल सही बात है, और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें।
2: जी सर, प्रशासन जो निर्देश दे उसका पालन करें,
1: और किसी भी प्रकार से नशा मदिरा का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं हम।
2: ना चलाएं, जी सर।
1: इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। सत्यपाल भाई बताएं हमें, फरमाइश क्या है आपकी?
2: सर मेरे को वो गाना सुनना है, हम आपके कौन है फिल्म का, लता जी की आवाज में है सर।
1: हाँ, गाने के बोल बताएं।
2: सर दिलवाले को सुनवा दे।
1: सत्यपाल भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद है कि यातायात के नियमों का पालन आप जरूर करेंगे, और सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
3: जो

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: हेलो सर।
4: नमस्कार।
3: पहले तो आप सभी आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं, 90 साल पूरे हो रहे हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के कारण ही ये 90 वर्ष सफलता के साथ मनाए जा रहे हैं।
3: खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर तहसील राजगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश से मनीष कुमार पारा
4: सर। क्या बात है मनीष भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हमें ये बताएं कि क्या क्या उपाय अपनाएं जिससे कि हम दुर्घटनाओं से बचें।
3: सबसे पहले उपाय सर, हेलमेट लगाए जब भी दो पहिया वाहन चलाए अपन।
4: हाँ हाँ,
3: तो हेलमेट जरूर लगाए।
4: बिल्कुल सही।
3: और आजकल जो ये गाना सुनते हैं नई युवा पीढ़ी, मतलब हैंडफोन पे गाना सुनते हैं।
4: हाँ हाँ।
3: उनको यही सजेशन है कि वे गाना ना सुने, अपने जो यातायात है उनका पालन करें सभी।
4: देखिए, यातायात के नियम इतने अच्छे बनाए गए हैं मनीष जी कि अगर हम उनका अक्षरशः पालन करते, जैसा बताया गया है हम वैसा करते हैं। अगर रोड क्रॉस करना है तो हम दोनों तरफ देख लें, अगर हम पैदल हैं तो दोनों तरफ देख लें, अगर कोई वाहन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है तो हम रोड क्रॉस कर लें।
3: इसीलिए सब बनाए गए सर आपको, कि देख कर चलना है।
4: और सबसे बड़ी एक जो बात देखने में

0: मौका मिला है सर।
1: मनीष जी, हमें उम्मीद है कि आप तो चूंकि एक शिक्षक भी हैं, तो ये संदेश आप अपने छात्रों को समझाएंगे, सुनाएंगे और गांव में और भी लोगों को बताएंगे। तो हम तो कहते हैं कि हमारे और आपके संदेश से अगर एक व्यक्ति की भी जान बच जाती है तो हमारा आपका बात करना सार्थक रहेगा। बताएं गाना कौन सा सुनवाएं?
0: देखो, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो एक प्रकार के आकाशवाणी जिंदगी बन गई है। तो आप फिल्म कसूर का जिंदगी बन गए, तुम यही गाना सुनवा दीजिए।
1: सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ।

0: मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
1: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए। 287 मेरी चाय।
3: हेलो,
4: स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने मैं।
3: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला बिजली समत प्रदेश से।
4: तो हारून भाई, हमें सबसे पहले ये बताएं कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए।
3: चाहिए अपने लिए एहतियात करना चाहिए जरूरी।
4: किस प्रकार की एहतियात बरतने चाहिए?
3: जी गाड़ी को धीमी चलाइए।
4: हाँ हाँ,
3: अपने एक साथ चलाइए गाड़ी के लिए। कम से कम का है, असल में धीरे गाड़ी चलाना चाहिए, कम से कम 40 या 50 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाना जरूरी है।
4: हाँ, हेलमेट जरूर लगाएं और साथ ही किसी भी प्रकार का नशा करके, मदिरा पान करके ये चीजें बिल्कुल ना करें। और अगर बोर्ड पर लिखा है कि स्पीड 45, तो हमें 45 के नीचे ही रख लें तो ज्यादा बेहतर है।
3: जी जी, हेलमेट का आपने बहुत ठीक बोला है, हेलमेट की आवश्यकता है लगाने की।
4: हमें बताएं कि गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
3: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी के, सुना देना परदेशी परदेशी।
4: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जाना।
1: सर
2: नमस्कार, फोन करी गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह।
2: चरण सिंह हमें बताएं क्या करते हैं आप बिलगुआ में।
1: सर हम खेती बाड़ी का काम करते हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा कभी सड़कों पर चलते हैं गाड़ी लेके?
1: हाँ चलते तो उसका पालन करते हैं सर। मोटर है, साइकिल है, जीप हो, इनको तो पालन जरूरी है, सबको करना चाहिए।
2: कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं आप?
1: जैसे मोटर साइकिल में जाते तो उसका पालन करते हैं, और जीपों का है, सभी का है, पैदल जाते हैं तो उसका भी नियम करते हैं।
2: बिल्कुल सही है। अगर हम मोटरसाइकिल या टू व्हीलर पर हैं तो हमें हेलमेट लगाना अनिवार्य है। पहला, चलते हुए गाड़ियों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां पर स्पीड लिखी रहती है कि भाई हमें इतनी स्पीड के अंदर रखना है तो वो रखें। ज्यादातर हॉर्न बजाने से बचें। अगर अस्पताल नजदीक है, स्कूल पास आ रहा है, गांव आ रहा है तो हम अपनी स्पीड को भी कम कर लें। ऐसी बातें अगर हम मानते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं।
1: सही कह रहे सर आप।
2: गाँव में रहते हैं तो कोशिश करें, अपने गांव वालों से बोलें कि सड़कों पर अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें।
1: जी आ जाता है, जरूरी है। जो गाय है फिरती है तो उनमें ठेला मेला में सड़कों पर पिच जाती है।
2: हम उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे, अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे, गांव वालों को भी बताएंगे कि भाई हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन जरूर करना है।
1: जरूरी है सर।
2: अब बता दें गाना कौन सा सुनवाएं?
1: खुद्दार का, वो आँख ही क्या जिसमें सूरत नहीं है जिसमें।
2: चलिए आइए सुनते हैं चरण सिंह जी आपकी फरमाइश पर खुद्दार फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद सर।

0: आह, ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
0: फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए।
3: हेलो,
4: नमस्कार, फोन करे गीत सुनने में स्वागत है आपका।
3: नमस्कार, खेरा नाता से गणेश बुलक।
4: हमें ये बताएं कि क्या कर रहे हैं अभी?
3: सर जी, गर्मी को आनंद ले रहे हैं और क्या, बच्ची को बाकी रहे बस।
4: अच्छा गणेश भाई, हमें ये बताएं कि यातायात के नियमों का पालन करने में हम किन किन दुर्घटनाओं से और कैसे बच सकते हैं, थोड़ा सा हमें समझाएं आप।
3: चलते वाहन में फोन से बात न करें।
4: पहली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी आपने। दूसरी,
3: और चलते गाड़ी ट्रेन में अपन लेन पार नहीं करें, और यातायात देख के चले। 12 महीना
4: हाँ।
3: चल रहे तो अपन फोन से बात ना करें।

0: बिल्कुल, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि हमें जब तक सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आए, ओवरटेक ना करें और मोड़ पर अपनी गाड़ी को स्पीड कम कर लें, नियंत्रित रखें स्पीड। और देखिए, जिंदगी जरूरी है, हमें कहीं पहुंचने में कोई इनाम नहीं मिल रहा है। प्रयास करें गणेश भाई कि अपने सभी साथियों से कहें कि नियमों का पालन यातायात के जरूर करें, मदिरापान करके गाड़ी ना चलाएं, फोन पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं।
1: नहीं सर जी, आप लोग के वो तो समझ रहे, आप आदमी मान जाए तो फायदा है, दे माने तो भाई पिए जाना।
0: नहीं, मानना तो चाहिए
1: मतलब
0: भाई, हम तो अनुरोध कर सकते हैं, सभी श्रोताओं से करेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। गणेश भाई बताएं, गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: सर जी गाना हम तेरे नाम को सुना देना, जीवन अपना सारा।
0: चलिए सुनिए अपनी फरमाइश पर तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: ये देख कैसे?
2: Happy birthday, bye.
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know, pa. सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know, ma. Nah.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: हेलो।
8: नमस्कार।
7: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करेगी तुम्हें?
8: बिल्कुल, और अपना शुभ नाम बता दें आप।
7: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ सर।
8: राम नरेश भाई, अच्छा लगता है जब भी आपके कॉल आते हैं।
7: आकाशवाणी सागर की बात करूँ तो मैं ऐप पर ही तो प्रोग्राम हमें मिलता है, परंतु जो ट्रांसमीटर है आकाशवाणी सागर का, उसका प्रसारण भी हमें यहाँ तक मिलता है।
8: क्या बात करें,
7: परंतु सर मेरा बड़ा बेटा है, वो अभी 14 वर्ष में है, उसकी शुरुआत है।
8: हाँ हाँ।
7: और वो अभी 8वीं कक्षा में जाएगा इस बार
8: जी। क्योंकि रामदास जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना और अपने परिवार को बदल सकते हैं और सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं और अपने आप को संस्कारवान भी बना सकते हैं। तो शिक्षा लेने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें।
7: जी जी, बिल्कुल आपने कुछ सही कहा सर। और शिक्षा वो एक ऐसा माध्यम है, हमें पूरे विश्व कहे या हमारे देश की बात कहे, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, चाहे वो टेक्निकल से जुड़ी हुई चीज हो या इतिहास से जुड़ी हुई

0: ये जो सारी बातें हमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही समझ में आती हैं, और आज टेक्निकल के विषय में हमारा भारत बहुत आगे हो गया है।
1: रामधरी तो जी, आप क्या करते हैं?
0: मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, देख नहीं सकता।
1: जी जी जी।
0: तो पूरा समय जो है आकाशवाणी के माध्यम से प्रोग्राम सुनकर अपना व्यतीत करता हूँ। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं घर, जैसे कोई चीज, जैसे हमें, जैसे घर के लोगों ने कहा कि फला फला चीज वहाँ रखी है, आप उठाकर ला सकते हैं क्या? तो हमें इतना आइडिया रहता है घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, और हम उस चीज को उठाकर घर तक, घर के सदस्यों के हाथ तक पहुँचा देते।
1: रामनरेश जी, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि सड़क यातायात के नियमों का पालन यदि हम करते हैं और दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच सकती
0: है। हमें स्पीड नहीं चलाना चाहिए, हमें ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
1: और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी व्यक्ति, जो भी श्रोता हमारी इन बातों को सुन रहे हैं, वो यातायात के नियमों का पालन जरूर करेंगे, अपनी और अपने साथ ही दूसरे लोगों की भी जान को जरूर बचाएंगे। बता दें गाना कौन सा सुनवाएं?
0: आज के इस कार्यक्रम में हम सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। पापा कहते हैं इस फिल्म का गीत है पहले प्यार का पहला गम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है।
1: और सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: हेलो जी, स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में।
3: हाँ, चंदमान नाम में बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट देरी छतरपुर। हमको एक सॉन्ग सुना दे जी।
2: हम आपको गाना जरूर सुनवाएंगे और हमें ये बताएं क्या करते हैं आप अपने गांव में।
3: हम अपने गांव में कर सिलाई का काम करते हैं।
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हमें ये बताएं कि यातायात के कौन कौन से नियमों का पालन करके चलते हैं आप सड़कों पर।
3: सड़कों पर यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। वाली जगह में वाहन उतार के जाना चाहिए और वाहन में चलते हुए मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए।
2: हाँ,
3: उसमें चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कोई किसी का फोन आया तो वाहन बंद कर लीजिए, एक साइड लगा के तो बात कर लीजिए।
2: हाँ, और साथ ही गाड़ी की स्पीड को भी नियंत्रित रखें, गाड़ी ओवरटेक करने से भी बचें। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।
3: हाँ सर, हमारा तो कोई बात नहीं है, साइकिल है तो हम तो साइकिल से जाते हैं।
2: बहुत ही बढ़िया। साइकिल भी जब भी चलाएं, रात में चलाएं तो उसमें कोई रोशनी के लिए कुछ ऐसा लगा ले कि जिससे अंधेरे में आपकी साइकिल दूर से दिख जाए।
3: हाँ सर।
2: और अच्छी बात है कि साइकिल चला रहे हैं तो देश के हित में भी है, आपके हित में भी है कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है।
3: जी सर।
2: खूब ध्यान रखें अपना और बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको।
3: सुना दीजिए, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं।
2: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है, अपने स्वास्थ्य का रखें बहुत बहुत ख्याल, यही होगी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। हमारे फोन इन कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे अरुण जायसवाल और हेमंत तिवारी, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770

आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात

0: आकाशवाणी के साथ सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जय शेखर ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। तो आइए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर। हर गांव हर आंगन
3: हम में है हीरो।
2: हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। इस प्रोग्राम में आपके साथ हूं मैं साहिबा।

0: साथियों, भरोसे का दूसरा नाम है हीरो मोटोकॉर्प। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर से जनरल मैनेजर श्री कपिल श्रीवास। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका।
1: सेंट्रल मोटर्स हीरो शोरूम की तरफ से मैं कपिल आकाशवाणी और अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे एक जाना पहचाना नाम है सेंट्रल मोटर्स सागर में, तो ये कितने साल से अपनी सेवाएं दे रहा है?
1: सेंट्रल मोटर्स हीरो परिवार को सागर में अपनी सेवाएं देते लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं, और इन वर्षों में हमने ग्राहकों से विश्वास और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर मजबूत रिश्ता बनाया है।
0: बहुत खूब। और ये तो सभी जानते हैं, कहने से ज्यादा लोगों ने इस चीज को महसूस किया है। आगे अपने बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। देखिए, जब कोई ग्राहक आता है और वाहन खरीदने का उसका मन बना लेता है, तो सबसे पहले वो सेंट्रल मोटर्स ही क्यों आए? कई सवाल हैं, क्या है यहाँ खास जो सबसे पहले वो यहाँ आए? और फिर सवाल ये भी उठता है कि कौन सा मॉडल है जो ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लोगों के द्वारा बिक रहा है सारा?
1: बिल्कुल शाहिबा जी, मैं आपको बताऊंगा। ग्राहकों के लिए सेंट्रल मोटर्स सिर्फ एक शोरूम नहीं है, बल्कि एक भरोसे और मजबूत रिश्ते का स्थान है, जहां उन्हें सही मार्गदर्शन, पारदर्शी व्यवहार और बेहतर आफ्टर सेल सर्विस सुविधाएं मिलती हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन सा मॉडल हमारा सबसे अधिक बिकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में स्प्लेंडर प्लस का बोलबाला है, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला जो मॉडल है हमारा वो स्प्लेंडर प्लस सीरीज का है।
0: देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन हीरो की धूम, क्योंकि हम में है हीरो।

0: आगे लेकर चलते हैं। और हम जानते हैं कि हीरो की एक लंबी श्रृंखला है, सबकी पसंद के मुताबिक यहाँ पर श्रृंखला में मॉडल्स है, तो कुछ चुनिंदा मॉडल्स जिनकी चर्चा आप करना चाहें क्या क्या है?
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ 100 सीसी से लेकर 125 सीसी और 160 सीसी से अधिक पावर की बिकने वाली हीरो बाइक और स्कूटर मौजूद है, जो हमारे किसान भाइयों, युवा साथी गण, जॉब करने वाले और अपना व्यवसाय करने वाले सभी ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक बनाए गए हैं, जिन्हें अच्छा माइलेज, सुरक्षा, आरामदायक राइड मिल सके।
0: जब हम यहाँ आते हैं या कोई भी ग्राहक यहाँ आता है, तो हमने देखा है कि ये चमचमाती हुई मोटरसाइकिल, स्कूटर, आपके दोपहिया वाहन एकदम चकाचौंध से लगते हैं। ऐसे में अगर ग्राहक आकर कंफ्यूज हो जाए कि ये वाला मॉडल ज्यादा अच्छा है या ये वाला मॉडल ज्यादा अच्छा है, या हम ये खरीद लें या दूसरा वाला मॉडल खरीद लें, ऐसे में जब कंफ्यूजन की स्थिति आती है, तो आप कैसे मदद करते हैं हमारे जो लोग यहाँ आ रहे हैं खरीदने के लिए?
1: बिल्कुल साहिबा जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हीरो कंपनी के ऊपर ग्राहकों के अपने अटूट विश्वास के चलते अधिकांश ग्राहक पहले तो हीरो के बिकने वाले मॉडल पहले से ही पसंद करके आते हैं, और अपने मॉडल चुनने में जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, तो हमारी सेल्स टीम उन्हें उनकी जरूरत, बजट और उपयोग को समझकर उन्हें सही मॉडल चुनने पूरी मदद

0: अब देखिए, जो मेरा सवाल आ रहा है कपिल जी, वो थोड़ा सा हटके है। आजकल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो वाहन है उस पर खर्च भी बढ़ रहा है निश्चित है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे में कपिल जी ग्राहकों से या जो लोग हमारे गाड़ी खरीदे हुए हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हीरो की गाड़ियों में प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन PGMFI जैसी टेक्नोलॉजी है, इसके साथ एक ICS आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे हमारे ग्राहकों को 70 से 80 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज मिल रहा है। और ऐसे अच्छे माइलेज मिलने के कारण पेट्रोल पे होने वाले खर्च बहुत कम हो रहे हैं।
0: वाह, ये तो आपने मतलब ऐसी बात बताई है कि हमारे श्रोता इसको सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे। देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मन में हैं, हमारे भी मन में है। सबकी स्थिति कपिल जी एक सी नहीं होती है। कभी कभी किसी के पास पर्याप्त फंड होता है कि वो आए और आकर खरीद ले गाड़ी और आपको पेमेंट करके चला जाए, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। और कई हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो बैंक तक जाके कैसे फाइनेंस कराते हैं इतने जानकार भी शायद ना हो। ऐसी स्थिति में जब कोई बंदा आपके पास आता है तो आप उसकी क्या मदद करते हैं?
1: बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के परिवेश में रहने वाले ऐसे सारे ग्राहकों के लिए हमारे यहाँ काफी सरल और सुविधाजनक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। अगर मैं ग्रामीण भाइयों के बारे में चर्चा करूं तो हमारे यहाँ एक सुविधा फाइनेंस की ऐसी है जिसमें उन्हें किसी प्रकार का बैंक खाता नहीं लाना, उन्हें इवन चेक बुक भी नहीं लाना, सिर्फ उनको उनके आधार कार्ड पर आसान फाइनेंस उपलब्ध हो जाता है। साथ ही जो किश्त होती है वो चाहें तो उस किश्त का भुगतान ही वो नगद सुविधा के तहत कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। देखिए, इस चीज से हम चाहते हैं कि श्रोता सुन रहे होंगे और वो लाभ भी उठा पाएंगे और बिना हिचक वो आएंगे सेंट्रल मोटर्स और अपनी पसंद का वाहन लेकर जाएंगे। और फाइनेंस की सुविधा चाहिए हो तो आपने बताया वो भी उनको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। अब एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं चलते चलते, वो ये है कि जैसे सेंट्रल मोटर्स है, जगमगाते हुए वाहन यहाँ खड़े हैं, मैंने अभी कहा कि जैसे चकाचौंध वाली दुनिया लगती है, ऐसे में जो हमारे ग्रामीण परिवेश से कोई व्यक्ति आता है एकदम गांव से यहाँ, तो वो सहज महसूस कर पाए, क्या ऐसी व्यवस्था है आपको कि वो आराम से यहाँ के बातचीत कर सके, अपनी बुंदेली भाषा का प्रयोग कर सके और लोग उसकी बात समझ के उसकी मदद करें?
1: बिल्कुल, मैं एक बात कहूँ, आज हमारी हीरो कंपनी की जो बैकबोन है ना, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो ग्रामीण परिवेश में आने वाले हमारे संतुष्ट ग्राहक की ही बदौलत है। तो आज अगर हम देश की नंबर वन कंपनी बने हुए हैं तो इसका पूरा श्रेय हमारे ग्रामीण अंचल से आने वाले भाइयों के ऊपर ही जाता है। तो अगर उन्होंने हमें चुना है तो हमारे हिसाब से सहज व्यवस्था उनको हमेशा मिली है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे का अच्छा रिश्ता बना पाए और हम उनको बेहतर सर्विस दे पाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास जी। सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर से हमारे साथ रहे और उन्होंने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छी तरीके से। कुछ और सवाल है हमारे मन में जो अगले अंक में श्रोताओं हम लेकर आएंगे। अगले रविवार सुनना न भूलें।
2: हर गांव हर आंगन,
3: हम है हीरो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी और मेरे सभी श्रोतागण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैं है हीरो।
2: जी हाँ, हीरो की तो बात ही अलग है। भरोसे का दूसरा नाम है हीरो मोटोकॉर्प। आप जरूर पधारिए सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर और अगर फोन करना चाहते हैं

0: तो हमारा फोन नंबर है 7225872531 यानी 7225872531। और अब साहिबा को दीजिए इजाजत। हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर।
1: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। ये कार्यक्रम प्रायोजित था सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:10 होने को हैं। कुछ ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे।

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका यह सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसकी डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का ये भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम गया।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

यहां से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958 राज खोसला ने बनाई काला पानी।

की जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और सीआईडी दोनों के हीरो देव ही थे।

0: काला पानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आर डी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा बहुत भो

1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

0: दिन थे जब जाने माने निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना साल 1962।
1: बहुत

एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राज खोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राज खोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राज खोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी? सन 1966, मेरा साया। सन 1967, अनीता।

कौंथी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी लज्जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहरी अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसला साहब की, राज खोसला साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: देवेंद्र गोयल।
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूँ आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं है तो दूसरी ट्यून। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहता, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
0: ओह गॉड,
1: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
0: जी
1: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी, और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था, और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने, और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राजखोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने ला

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।
1: जब

इतना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी 2 बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे 2 बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।

आशा पारेख के साथ राजकोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतोषी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी सहगल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए

राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे तो

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

अस्सी का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे

0: जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कमर जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिक किया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ए धन जवानी।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ थी, नगमनिगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज़ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

शेवन रिजवी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने, महेंद्र कपूर आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी दिल और मोहब्बत।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफ़र की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस बात को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद। हाँ, एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ, तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है। ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफ़र में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आप

आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है, या आपको जब आप इसे ख़रीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है? तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं, तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोता कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवानिया खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोता, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या

आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक

इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थककर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नज़रें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं।

0: काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोता, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप ख़रीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोता, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफ़र हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हम सफ़र बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।
1: रंग में है

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओ, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और

0: कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है जहाँ कुंदन और मीनाकारी का काम होता है? एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के गजरा सजा के

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता, आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आँखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफ़र और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्ममंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतज़ार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफ़र हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफ़र अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के ज़रिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना, मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफ़र कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक को और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है।

गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन, कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको

0: नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम

0: नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया

ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया

जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग।
श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओ नमस्कार, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैक मेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफ़ी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ज़िला अहल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नज़मा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेंद्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय

0: श्री कृष्ण लेते हैं।
1: वो क्या कहते हैं?
0: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
1: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
0: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
1: क्या?
0: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
1: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
0: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
1: फिर वही तुलना।
0: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
1: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
0: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
1: महाराज।
0: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण कर।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गंधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपेंद्र मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद, गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप

0: दिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
1: बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
1: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
1: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
1: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
1: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
1: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
1: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वलकल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी, हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही, कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी।

0: तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने।
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया।
1: महाराज,
0: इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, और इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम हैं महाराज, हम हैं।
0: कांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध बंद हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको। मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: कांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें

0: याद लग गई।
1: आपको कैसे याद हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए।

0: आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों के साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
2: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहाँ जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
1: वो तो बहुत पॉपुलर था।
2: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
2: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
2: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा,
2: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
1: अच्छा
2: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
2: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब हाँ। वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो
0: भी
1: अपनी
0: दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने तो, शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप?
1: हाँ,
0: जी ने
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
0: हाँ।
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरती के
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
0: क्या बात है। हाँ, क्या बात है।
1: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम
0: थे।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा प्यार,
1: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट,
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत,
1: हर पल मौके। ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से।

0: हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
1: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
0: जी,
1: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
0: जी।
1: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
0: किस बात पे?
1: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
0: जी।
1: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
0: जी।
1: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, पूरे उसमें गूंजा।
0: क्या बात है।
1: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
0: जी।
1: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
0: जी।
1: वो भी ऑडियंस में थे
0: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
1: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
0: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा?
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर,
0: मंदिर है,
1: है।
0: जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ।
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है, अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है, तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, दो तीन साल की या चार साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया।
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है, वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया, तो वहां से शुरू हुआ।

0: फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
1: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती है नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा।
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
1: जी,
0: गई
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया।
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती है। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते।
1: तो आपके लिए बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी।
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
2: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको
1: आर्ट...
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
2: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे, और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर की आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही
0: तेज
1: है, तगड़ी है, बड़ी है, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके
1: हाँ,
0: नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है। बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती
1: है? हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपए के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24,00,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है, यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाएं करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियाँ, तालाब, झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई, स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण हम करेंगे।

चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था, जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे। इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग आदि। मित्रों, अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई ना कोई दवा ले रहा है, क्योंकि जीवन शैली आज स्वास्थ्य के अनुकूलन नहीं है। खान पान जहरीला हो गया है। अनाज, सब्जी, फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है। यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है। अतः स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाएं और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एक आत्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तथा ये स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावाही दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एक तत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है।

0: संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग ना करें। यदि कोई पुराना रोग है, बीपी या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही लें जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए। शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें, तुरंत ना लें। शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता का त्याग आवश्यक है। साथियों संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों परम्पराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं।

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है,
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। एक बार फिर हम पहुंचे हैं कमिश्नर महोदय के पास और होगी बात कुछ खास मुद्दों पर। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि सर, जब हम कोई सुविधा लेते हैं, जैसे नगर निगम की ओर से भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कुछ कर भुगतान है, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं?
5: निश्चित रूप से, जैसे कि आपको पता है, पहले तो आपको जो है बधाई देना चाहूंगा कि आपके द्वारा लगातार एपिसोड जो है सफलतापूर्वक पूरे किए गए। साथ ही साथ ये एक बेहतर माध्यम है सागर और नगर निगम के बीच बात रखने का, जो आपके रेडियो के प्रसारण के माध्यम से हमको जो है प्राप्त हुआ। हम सागर के सभी शहर वासियों से और यही आग्रह करना चाहेंगे कि सागर नगर निगम का संचालन आपके द्वारा दिए जाने वाली करों के माध्यम से ही होता है, जिसके माध्यम से आपको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें कि आपको जल प्रदाय किया जा रहा है, डोर टू डोर आपका कचरा है, आपकी संपत्ति कर वगैरह जो है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि अभी 31 मार्च तक अपने जल कर, कचरा कर और संपत्ति कर और अन्य जो भी कर जो आप पे निगम के द्वारा अधिरोपित किए गए हैं, उनका भुगतान करें और होने वाली असुविधा से बढ़े। इससे अगर आपके द्वारा कर का जो है भुगतान नहीं किया जाता है, तो आप और हम दोनों को ही असुविधा होती है, आपके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है और निगम को भी संचालन में दिक्कत होती है। हमारे द्वारा भी फिर प्रयास किया गया है कि आपको अधिभार में छूट दी जाए, इसको लेकर शासन को हमने प्रपोजल भेजा है। होपफुली

0: वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो आप 31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा कर का जो है भुगतान करें और होने वाली असुविधाओं से बचें। देखिए, इसके अलावा आप सभी लोगों से आग्रह है कि निकट भविष्य में स्वच्छता सर्वे जो है आने वाला है और भारत में अपनी कैटेगरी में सागर की एक 10वीं कैटेगरी है, तो हम ये चाहते हैं कि सागर नगर निगम के सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि हम सागर को नंबर वन बनाए। उसके लिए जो है नगर निगम के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप अपना लोग सहयोग करें। आपका पहला सहयोग यही है कि इधर उधर ना थूकें, खुले में जो है शौच ना करें, अपने घर का जो कचरा गीला सूखा है वो उसको अलग अलग रखें और कचरा गाड़ी में ही दें, जिससे कि सागर को साफ और सुंदर बनाने में मदद मिले और सागर को नंबर वन बनाने में प्रयास रहेंगे उनसे हम निश्चित रूप से सागर को नंबर वन बनाने में कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नगर निगम के कार्यों की सराहना करते हुए एक आम नागरिक के विचार।
2: नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र अहिरवार आप सभी के बीच सागर के बारे में आज कुछ कहने जा रहा हूँ। इन कुछ पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूँ। विंध्याचल की गोद में बैठा जो सुसंस्कृत और सयाना है, मध्य प्रदेश का हृदय है सागर, बुंदेलखंड का ताना बाना है। झीलों की लहरें गाती हैं, यहाँ इतिहास की गौरव गाथा है। इस पावन माटी के आगे झुक जाता सबका माथा है। आज मुझे मध्य प्रदेश के उस हिस्से पर बोलने का गौरव मिला है जिसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। साथियों, सागर सिर्फ एक नाम ही नहीं है, यह अपने आप में महासागर है। इस शहर के सीने पर जो 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील हिलोरें लेती है, उसी विशालता के कारण इसका नाम सागर पड़ा। सन 1660 में गौण राजा उदय शाह ने जिस शौर्य के साथ इसे बसाया, उसकी गूंज आज भी यहाँ के जर्रे जर्रे में सुनाई देती है। जब बात शिक्षा और त्याग की आती है तो सागर का इतिहास पूरे देश का सिर फक्र से ऊंचा कर देता है। यह वह पावन भूमि है जहाँ महान दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी ने जन कल्याण के लिए अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई दान कर दी और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आज यह हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख देने वाला ज्ञान का मंदिर है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, सागर का एरन वह ऐतिहासिक स्थल है जिसने पूरी दुनिया को सती प्रथा के सबसे पहले लिखित साक्ष्य दिए। आज का सागर सिर्फ इतिहास की गाथा ही नहीं गा रहा बल्कि अपने आधुनिक भारत की रीढ़ बनकर खड़ा हो रहा है। यह भारत की एक चमकती हुई स्मार्ट सिटी है। बीना में स्थित ओमान ऑयल रिफाइनरी देश को ऊर्जा प्रदान कर रही है। नौरादेही जैसा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आज चीतों की दहाड़ से गूंज रहा है और यहाँ की बुंदेली संस्कृति और चिरौंजी की बर्फी का स्वाद ऐसा होता है एक बार जो चख ले वह ताउम्र सागर को नहीं भूल पाता। हमारे सागर शहर में सड़क व्यवस्था, पार्क, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और उनका सौंदर्यकरण देखने लायक है। यहाँ पर लगभग अतिक्रमण हटाया जा चुका है जिससे रास्ते काफी चौड़े हो गए हैं। सागर स्वच्छ भारत मिशन की ओर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है। हमारे सागर में कचरा प्रबंधन बहुत ही गुणवत्ता से किया जा रहा है। इसके लिए समस्त सागर प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। अंत में कहना चाहूँगा, ज्ञान की इस पावन धरा को दिल से शीश झुकाता हूँ, सागर का मैं वासी हूँ, सागर के गीत गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
4: और नासिर को।
3: नमस्कार।
4: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
3: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
5: सागर को बनाए अपने सपनों का सागर।
3: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 5:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए काव्य गोष्ठी। आमंत्रित कवि हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, टीकाराम त्रिपाठी, संतोष श्रीवास्तव, नलिन जैन और जेएल राठौर। तो आइए सुनते हैं ये काव्य गोष्ठी।
7: नमस्कार, मैं नलिन जैन। आज की काव्य गोष्ठी में सागर आकाशवाणी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच काव्यक्रम में कवि के रूप में सागर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री जेएल राठौर प्रभाकर जी, जो कि मकरोनिया सागर में रहते हैं। श्री टीकाराम त्रिपाठी रुद्र जी, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी एवं श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी, जो कि मकरोनिया में निवासरत हैं। तो आप सभी कवियों का मैं सागर आकाशवाणी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सीधे ही अपनी सरस्वती वंदना के कुछ छंद के साथ में फिर काव्य गोष्ठी को हम आरंभ करते हैं। तो लीजिए सुनिए, मैं नरेंद्र जैन, एक सरस्वती वंदना का छंद। मैया

0: धरा है पद्माकर हरी सह के साहित्य की धरा है। शिव बेधड़क बिठल भी गाकर गए तराने।
1: अच्छा,
0: निर्मल कवित्त रचिल

0: जीएगा।
1: बहुत सुंदर।
0: प्रथम कवि के रूप में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर आदरणीय संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और काव्य पाठ करें।
2: धन्यवाद। आकाशवाणी सागर को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आज हिंदी का काव्य सम्मेलन है और हिंदी के काव्य सम्मेलन में यदि पूर्व राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी को याद न किया जाए तो ये मेरे समझ में बिल्कुल उचित न होगा। तो लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविताओं के माध्यम से देश की आज़ादी में भी अहम योगदान दिया है और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, पहला मैं अपना सृजन जो है वो गीत के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को अर्पित करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने

अंग्रेजी दासता का तमस घोर छाया, चाटुकारिता का वैभव दिग दिगंत छाया। आत्मा का मान जैसे गिरवी रखा था, फल स्वराज का

0: हाहाकार फिर भी परसु की प्रतीक्षा, सुना हाहाकार फिर भी परसु की प्रतीक्षा, राज्यसभा के हिंदी के प्रेम की समीक्षा,
1: बढ़िया बढ़िया,
0: कलम का सिपाही बनके समर शेष है जीवन के,

आई और अंतिम पद है ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी अलंकरण। ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी अलंकरण, नमन है तुम्हें हे शारद सुध पद्म विभूषण, विद्रोही तेवर तेरे रंग ऐसे लाए,

0: आई। और एक क्षणिका के बाद मैं अपना काव्य पाठ बहरे सत्र का समाप्त करूंगा। संबंधों के वित्त कोष का समय समय पर ऑडिट करिए, अपने खुद ऑडिटर बन के हानि लाभ अनुसार समरिए, विद्यार्थी बन उत्तरदायी, संबंधों के हानि लाभ का पूर्ति हानि की कैसे होगी सोच विचार उचित पग धरिए, पूर्ति हानि की कैसे होगी सोच विचार उचित पग धरिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी, आपने राष्ट्र कवि पद्म भूषण श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर कविता सुनाई और एक क्षणिका आप अभी उनसे सुन रहे थे। काव्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिटायर्ड प्राचार्य श्री जेएल राठौर प्रभाकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आए और काव्य पाठ करें। श्री जेएल राठौर प्रभाकर जी।
2: प्रस्तुत है पहली सजल। अंधकार संहार, अंधकार संहार हमें ही करना होगा, नव प्रकाश संचार हमें ही करना होगा।
1: बढ़िया।
2: अंधकार संहार हमें ही करना होगा, नव प्रकाश संचार हमें ही करना होगा। पतित पावनी पाप सभी के धोकर मैली, पतित पावनी पाप सभी के धोकर मैली, गंगा का उद्धार हमें ही करना होगा, गंगा का उद्धार हमें ही करना होगा। पर्यावरण विषाक्त हमी ने कर डाला है, पर्यावरण विषाक्त हमी ने कर डाला है, पुनः प्रकृति संहार हमें ही करना होगा, पुनः प्रकृति संहार हमें ही करना होगा। पापों का नित बोझ बढ़ा जाता है देखो, पापों का नित बोझ बढ़ा जाता है देखो, पृथ्वी को निर्भर हमें ही करना होगा।
1: बढ़िया,
3: बहुत बढ़िया।
2: मिटे घृणा विद्वेष, परस्पर शांति सुमति हो, मिटे घृणा विद्वेष।

0: उपदेश परस्पर शांति सुमति हो और प्रेम भाव विस्तार हमें ही करना होगा। प्रेम भाव विस्तार हमें ही करना होगा। जीवन का जलयान न आए कोई खेने, जीवन का जलयान न आए कोई खेने, निज भाव सागर पार हमें ही करना होगा। निज भाव सागर पार हमें ही करना होगा। अंत में है कि चमत्कार अवतार नहीं होने वाला है, चमत्कार अवतार नहीं होने वाला है, अनाचार प्रतिकार हमें ही करना होगा। अनाचार प्रतिकार हमें ही करना होगा। और मैं इस संदर्भ में क्या करता हूं सुनिएगा दूसरी सजल के, आग लिखता हूं सदा अंगार लिखता हूं, आग लिखता हूं सदा अंगार लिखता हूं, ओज से परितप्त कर ललकार लिखता हूं, ओज से परितप्त कर ललकार लिखता हूं। अंधकारों का नहीं साम्राज्य बढ़ पाए, अंधकारों का नहीं साम्राज्य बढ़ पाए, रश्मियों की मैं सतत बौछार लिखता हूं, रश्मियों की मैं सतत बौछार लिखता हूं। कूट निर्मित झूठ का दुष्चक्र रोकूंगा, कूट निर्मित झूठ का दुष्चक्र रोकूंगा, सत्य का संधान कर संघार लिखता हूं, सत्य का संधान कर संघार लिखता हूं।
1: बढ़िया।
0: कष्ट देते हैं बहुत नित मार्ग में कांटे, कष्ट देते हैं बहुत नित मार्ग में कांटे, हर्ष पुष्पों से यहाँ उपचार लिखता हूँ, हर्ष पुष्पों से यहाँ उपचार लिखता हूँ। घोलते हैं शत्रु विष सौहार्द के रस में, घोलते हैं शत्रु विष सौहार्द के रस में, मैं सतत पीयूष की नवधार लिखता हूँ, मैं सतत पीयूष की नवधार लिखता हूँ। क्रूर झंझावात है आतंक फैलाता, साहसी प्रतिरोध का अवतार लिखता हूँ, साहसी प्रतिरोध का अवतार लिखता हूँ। और अंत में है कि युद्धवादी देश कुछ कब बुद्ध की माने, युद्धवादी देश कुछ कब बुद्ध की माने, ओ कह सठे साठ्यमो ने, कह सठे साठ्यमो ने, तलवार लिखता हूँ, आग लिखता हूँ सदा अंगार लिखता हूँ, ओज से परितप्त कर ललकार लिखता हूँ।
1: जी हाँ, एक बेहतरीन सजल अभी आप सुन रहे थे श्री जेएल प्रभाकर राठौर जी से, आग लिखता हूँ सदा अंगार लिखता हूँ, निश्चित रूप से ओज से परिपूर्ण सजल। धन्यवाद करता हूँ ना, और काव्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक दोहे के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ कि जिंदगी भर खेल चलते भावना पर, जिंदगी भर खेल चलते भावना पर, हम महज किरदार बनकर झूलते हैं। मैं काव्यक्रम आगे बढ़ाते हुए बड़े आदर के साथ में वरिष्ठ कवि और प्रगतिशील लेखक श्री टीकाराम त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं, काव्य पाठ करें।
2: नमस्कार साथियों,
3: स्वागत है।
2: अभी इस गोष्ठी में हमारे साथी कवि विद्यार्थी जी ने दिनकर का स्मरण किया, मैं निराला का स्मरण कर रहा हूं।
3: स्वागत है, स्वागत है।
2: निराला की स्मृति में कविता जो मैंने लिखी है, वो कविता उसका शीर्षक है अग्निपथ। की आई है वसंत पंचमी अर्थात मेरा जन्मदिन है, मेरा अर्थात मेरी विधा के कवि का नक्षत्र मंडल के मध्य प्रभायुक्त दीप्ति विधायक सुदिव्य तारकों को द्युति प्रदायक सर्व अपवर्गदायक उन्मुक्त रवि का, मेरे कवि का इष्ट का, मेरे कवि का इष्ट का, मेरी सरस्वती के तनय का बलिष्ठ का जन्मदिन है। वह उर्ण है शारदा के शेष ऋण से, जीवनी के स्पंद रूपक भीष्म व्रण से मुक्त सारस्वत कवि का जन्मदिन है। मित्र था मजदूर जन का, भाल पर उसके पसीना बह रहा था और निश्चित कह रहा था, मग्न चिंता क्षिप्त वाणी थी भरी संवेदनाएं, गीत गाती देखती थी तारिकाएं और शुचि बनकर ऋचाएं लांघती थी हिमगिरी को जब वह पैदा हुआ था।
1: बढ़िया।
2: अभावों के घर पला था, महाप्राण निराला था, छंद बंधन तोड़ डाले, रसो रूपक मोड़ डाले, करुण गाथाएं कथानक बन चुकी थी नियति उसकी, वरुण कांक्षाएं बनी थी सुरति जिसकी, प्राण पर्णों से सदा सेवाएं दी हैं और हिंदी की खड़ी बोली की जड़ें जमाई हैं राष्ट्र के साहित्य में, सामीप्य में, सारूप्य में। वह बोलता था, चीखता था, मंच पर ही निरंतर नए भाव, नए संघर्ष के स्वर, विकल कालातीत स्वप्न क्षणों में भी, और इतना था कि क्षण के कणों में भी, भक्ति गुरुवर में लगी थी राग रागिणियां सधी थी, था कहां

0: अवतार थी कहां झंकार, थे कहां वे स्वर, थी कहां वे नाद तंत्री, जो कि निज वश कर चुकी ना भीष्म कवि को भीष्म छवि को।
1: बढ़िया।
0: अनगिनत थी आपदाएं, काव्य में भी थी गदाएं, चूर करना चाहती थी क्रूरता को, पूंजियों के पुंज को, मदधारियों को, जो कि सत्ता के नदों में नहाते थे उन विपुल धनचारियों को, दे सबक वह डांटता था और कविता पाठ करके गांठता था राशियां जो बांटता था भिक्षुकों को। नहाते थे उन विपुल धनचारियों को, दे सबक वह डांटता था और कविता पाठ करके गांठता था राशियां जो बांटता था भिक्षुकों को। गिट्टियों के तोड़ने वाले मजूरों की दशा वह देखता था, स्वेद की हो या ध्रुवों की बिंदुओं से रेखता अनुरेखता था। काव्यमय संवेदनाओं में उन्हें वह डुबाता था, चुभाता था, लेखता था। आदि में वह रूप से किंचित जुड़ा था, किंतु कुछ दिन बाद ही वह आदमी जो आम है की ओर सचमुच ही मुड़ा था हटी वह बंदरों को दान देने पर चिढ़ा था, या कि जीवन के तिलिस्मी वाद से भी उखड़कर फिर मन मुड़ा था। प्रगति धर्मी बन गया वह, वाद छोड़ा, ताल छोड़े, यति छोड़ी, गति छोड़ी, छंद के संबंध छोड़े, तुके छोड़ी, और जो भी छोड़ना था छोड़ डाला, साथ ही तत्काल युग को मोड़ डाला। किंतु उसके साथ कविता की निरंतर तीव्र गति से चली आती जा रही थी और सुरभित और गर्लित और अतुलित घोर वलयत पंक्तियां वे थे नहीं विराम कोई, अल्पपूर्ण या की मात्राएं नहीं थी, पल्लवित हो दृष्टिगोचर और थी सभी द्रुत भी सुलंबित पंक्तियां वे हो चली जाती खगों की, लग रहा जो नील दुर्गम मार्ग के आकाश में अनंतर सर्पिल गति से देखता जाता वसंत दृष्टि पथ छितरा गया है, हो गया बूढ़ा कि मानो आ गया हो धरातल पर श्लिष्ट धाराएं लिए हो भगीरथ सा ऋषि प्रभव वह निराला है, ऋषि जनों की पंक्ति का वह दिवाला है, काव्य की सुरनगरियों का उजाला है, यह समझकर दे रहा हूँ अंजलि श्रद्धाएं भरकर हे निराला, हो सके तो जन्म लेना हमारे ही बीच, सत्य नर्मद तीर मिटाओगे पीर, बहाते जो नीर उनकी हैं उन्हें संवेदनाएं, वाणियों से पंक्तियों से लो करो स्वीकार युग का अग्निपथ्य है, लो करो स्वीकार युग का अग्निपथ्य है। धन्यवाद।
1: एक बेहतरीन कविता, लंबी कविता अभी आप सुन रहे थे श्री टीकाराम त्रिपाठी जी से, और अगले कवि को आमंत्रित करूं। मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष हैं आप, और उन्हें एक दो दोहे के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि नीति परक सौजन्य में संस्कार के खोल, नीति परक सौजन्य में संस्कार के खोल, जितने गहरे आप हैं उतने गहरे बोल। बड़े आदर के साथ में मैं आदरणीय आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए।
2: धन्यवाद भाई नलिन जी और हमारे साथी कविगण। मैं कुछ तीन चार छोटी छोटी कविताएं
1: जी स्वागत है,
2: कविताएं मुक्त छंद की है। पहली कविता है, अच्छा आदमी ऐसा क्या लिखा जाए कि दुनिया में बचा रहे थोड़ा सा अच्छा आदमी, जो नफरत करना नहीं जानता, जो हिंसा नहीं चाहता, जो बेशुमार धन दौलत नहीं चाहता, जो झूठ फरेब में नहीं जीता, जो अपने जेहन में बचाए रखता है आदमी होने की तमीज।
1: बढ़िया बढ़िया,
3: बहुत बढ़िया।
2: आदमी होने की थोड़ी गुंजाइश, थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा अच्छा आदमी, अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से, अपनी अच्छाइयों से। अच्छा आदमी होना हर समय में संभव नहीं होता है। अच्छा आदमी हमारे चाहने से नहीं बनेगा, हमारे कहने से नहीं बनेगा, हमारे लिखने से शायद बनेगा अच्छा आदमी। आज अच्छा आदमी सबकी जरूरत है, आज अच्छा आदमी हो गया है सपना, दुनिया में और कविता में भी।
3: बहुत बढ़िया,
1: बहुत बढ़िया।
2: दूसरी कविता है
1: जी, स्वागत है।
2: पानी बचा सको तो बचा लो धन दौलत के एवज में आंखों का पानी, बचा सको तो बचा लो धन दौलत के एवज में आंखों का पानी, बचा लो नदी सरोवर का पानी, धरती का पानी, वर्षा का पानी, सबके हिस्से का पानी, पानीदार लोगों बचा लो समय रहते पानी के स्रोत, अगली पुस्त के लिए पानी के बिना सबसे पहले मरेगा आदमी।
1: बहुत बढ़िया।
2: मरेंगे पशु पंछी, मरेंगे पेड़ पौधे, मरेगा जंगल, मरेगी धरती, सचेत नहीं होंगे क्या हम, चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा।
0: वाह वाह वाह।
2: एक दिन जीने के लिए, तड़पण के लिए, तो बच्चे क्या कहेंगे, ऐसे होते हैं क्या पानीदार लोग।
4: वाह वाह, क्या बात।
2: गर्मी का मौसम है, अमलतास जगह जगह खिले हमें दिखते हैं। अमलतास शीर्षक है कविता का।
1: जी स्वागत है।
2: इस भीषण तप्त मौसम में जब खिलने से कर दिया इनकार जंगल के सभी वृक्षों ने, तब भी खिला हुआ है प्यारा अमलतास। आभाहीन हो गए हैं जब सबके चेहरे वीरानी ने घेर लिया है पूरे जंगल को, ठिठक कर आ बैठा है वसंत अमलतास की गोद में, उसकी खिलखिलाहट में ग्रीष्म की आग सी लपटें निरुत्तर हैं उसके उत्साह को देखकर।
1: वाह शानदार।
2: सवाल सवाल ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, सवाल ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, हमारे विचारों में पैनापन ले आते हैं। सवालों के उत्तर मिले या ना भी मिले, नए नए सवाल उभरते रहना चाहिए, यह हमारे प्रतिरोध का सबूत है। सवालों पर मौन रहना ज्यादा घातक है, सवालों पर कुंडली मार कर बैठना और खतरनाक है। सवाल सूरज की रोशनी की तरह धरती पर बिखर जाएं, हमारे मन में नई रोशनी भर दें, नए नए सवाल हर वक्त में उभरते रहना चाहिए, सवालों का एक लंबा सिलसिला। और इस एक छोटी सी कविता।
1: जी स्वागत है।
0: स्वागत है।
2: बड़ा घर तुम पूछते हो गांव में बड़ा घर कौन है, तुम पूछते हो गांव में बड़ा घर कौन है, तो सुनो बड़ा घर वही है जिसमें एक छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख को समझकर, दूसरों को दुर्बल देखकर दौड़ पड़ता है फौरन उसकी सहायता के लिए।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: कुछ थोड़ा सा तासीर बदल दें, बहुत उस तरह से गायन की शैली नहीं है।
1: जी स्वागत।
2: एक रोमांस की है कविता।
1: जी सुनाइए।
2: वह कब से नजरें बिछाए बैठी है, वह कब से नजरें बिछाए बैठी है, अपना दिल सजाए बैठी है, एक बार तो झांक लेते तुम तेरे दीदार के वास्ते, इस जमाने से तकरार किए बैठी है, तुम्हें नहीं पता उसका दिले हाल, तुम जंजाल बिछाए बैठे हो।
3: बहुत बढ़िया।
1: वाह वाह वाह।
3: धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी, आपकी बहुत सुंदर छंद मुक्त कविताओं से हम लोग कृतार्थ हुए, गदगद हुए। और अब मैं आवाज देता हूँ, अब तक जो हमारे इस काव्य सम्मेलन का संचालन कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर नलिन निर्मल जी को, इन चार पंक्तियों के साथ। अपना हृदय हरित तरवर की शाखा सम लहरा कर रखिए, चिंता सोच किले शिकवों के टाकों पर पहरा कर रखिए, और निश्चित होगी गाती कोयल अरुचिड़ियों के कलरव मधुरम, और कानों में मधुरस घोलेगा ये विश्वास हरा कर रखिए, कानों में मधुरस घोलेगा ये विश्वास हरा कर रखिए। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूँ आदरणीय डॉक्टर नलिन निर्मल जी को, स्वागत है आपका।
1: जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर है, तो जेठ की गर्मी पर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ।
4: स्वागत।
1: लीजिए सुनिए। जेठ की तपती दोपहरी तापक्रम यह देखिए, जेठ की तपती दोपहरी तापक्रम यह देखिए, और दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुकटी देखिए।
0: अच्छा।
1: जेठ की तपती दोपहरी तापक्रम यह देखिए, और दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुकटी देखिए, तो हवा के चलते बवंडर तापमानी यह प्रखा, नए उपक्रम की अदा ग्रीष्म की शक्ति सिखा, तो लू के भीषण थपेड़े बच के रहिए देखिए, और दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुकटी देखिए। नव तपा के दिवस नौ है मौसमी आगोश में, नवतपा के दिवस नौ है मौसमी आगोश में, और पसीने से भीगता गतिशील क्रम है जोश में, तो पेट भरने नीरयुत, पेट भरने नीरयुत भोजन व ठंडक देखिए, जेठ की तपती दोपहरी ताप क्रम यह देखिए, दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुक्ति देखिए।
0: भ्रुक्ति का जवाब नहीं, बहुत बढ़िया।
1: तो प्रकृति है मीठा खजाना यही अमृत तुल्य है, प्रकृति है मीठा खजाना यही अमृत तुल्य है, शीत वर्षा ग्रीष्म जीवन धारा को बहुमूल्य है, तो इसका भी आनंद लें, इसका भी आनंद लें, अवनी की आवृत्ति देखिए, इसका भी आनंद लें, अवनी की आवृत्ति देखिए, दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुक्ति देखिए, जेठ की तपती दोपहरी ताप क्रम यह देखिए, दग्ध यह आतप करे आदित्य भ्रुक्ति देखिए। और 21 जून को योग दिवस आने वाला है, तो कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ। योग दिवस 21 जून के ऊपर। विश्व पटल पर योग का करते सब गुणगान, विश्व पटल पर योग का करते सब गुणगान, हम अपने घर से करें योग कला का मान, सभी सहभागी बने योग शक्ति के द्वार, सभी सहभागी बने योग शक्ति के द्वार, और जागरूक हर नागरिक करे योग से प्यार, जागरूक हर नागरिक करे योग से प्यार, तन मन होते स्वस्थ जब बुद्धि रचे कवित्त, तन मन होते स्वस्थ जब बुद्धि रचे कवित्त, लेखन की यह कला भी योग तत्व का सत्व, लेखन की यह कला भी योग तत्व का सत्व। तो 21 जून है बड़ा दिन हम सबको त्योहार, 21 जून है बड़ा दिन हम सबको त्योहार, योग शक्ति ने विश्व को दिया स्वस्थ संसार, योग शक्ति ने विश्व को दिया स्वस्थ संसार। तो भारत का परचम हुआ संस्कृति को यह मान, भारत का परचम हुआ संस्कृति को यह मान, दीर्घायु हो नागरिक विश्व करे सम्मान, दीर्घायु हो नागरिक विश्व करे सम्मान। और मातृभाषा हिंदी पर कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ, लीजिए सुनिए। कि वाणी मन का तार है जीवन का श्रृंगार, वाणी मन का तार है जीवन का श्रृंगार, हम सब हिंदी पुत्र हैं मन मानस का सार। तो बचपन से माँ से मिले, बचपन से माँ से मिले शब्दों के आगार, वो पिता भाई व बहन से हिंदी शब्द व्यार। तो वैज्ञानिक भाषा सहज लिपि नागरी अंश, वैज्ञानिक भाषा सहज लिपि नागरी अंश, और भारत की भाषाएं सब देवनागरी वंश,
3: बहुत सुंदर,
1: भारत की भाषाएं सब देवनागरी वंश। पाए हैं गुणगान यह हिंदी मन और मात, पाए हैं गुणगान यह हिंदी मन और मात, और भाषा माता सी गुणी पिता सरी की साख, भाषा माता सी गुणी पिता सरी की साख, हिंदी में व्यवहार से सहज बने सब काज, वो सभी समझें आपके मुख मुद्रा अंदाज, सभी समझें आपके मुख मुद्रा अंदाज। और मैं द्वितीय सत्र के आरंभ में बड़े आदर के साथ में आदरणीय श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी को पुनः आमंत्रित करता हूं, आए काव्य पाठ करें। श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी,
3: धन्यवाद। अभी पिछले 2 जून को हमने माता पिता दिवस मनाया, तो इस सत्र में मैं अपनी पूरा काव्य पाठ माता और पिता को समर्पित करता हूं।
1: जी स्वागत है।
3: एक क्षणिका, कितने अनपढ़ हैं जो मेरी माँ को अनपढ़ कहते हैं, कितने अनपढ़ हैं जो मेरी माँ को अनपढ़ कहते हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस दुनिया में रहते हैं, क्या दुख है मेरे चेहरे में, किन भावों से भरे पिता और विद्यार्थी माँ के कर्तव्य तब तद अनुसार निभाते हैं, विद्यार्थी माँ के कर्तव्य तब तद अनुसार निभाते हैं। और एक कुंडलिया,
1: जी स्वागत है।
3: आजकल के बच्चों पर जो पिता के प्रति क्या भाव रखते हैं, तपते हैं माँ बाप जब तब पलते हैं आप, तपते हैं माँ बाप जब तब पलते हैं आप, और तपे धूप में पिता तो माँ चूल्हे की ताप,
1: वाह वाह,
3: माँ चूल्हे की ताप, आप परिपक्व हुए जब, और शीतल कलकल नीर नहाए माँ पिता तब, और विद्यार्थी घर बसा आपका प्रभु जपते हैं, और मगर आपके सेवा पद पर पग तपते हैं, मगर आपके सेवा पद पर पग तपते हैं। और एक और काव्य रचना, पिता के उस त्याग पर जिसको बेटा अपने जीवन में तो नहीं समझ पाता, परिंदों की ऐसी जिंदगी हो गई, माँ बाप ने बच्चों को पाला पढ़ाया बड़ा किया और वो विदेशों को फुर हो गए, और अंत में जिस समय उनको माँ बाप को उनकी जरूरत है उस समय वो ख्याल नहीं कर पाते, लेकिन बाद में आकर मैं ये कहता हूँ वो निश्चित पछताते हैं। यही मैंने अपनी इस कविता में कहने की कोशिश की है। शीर्षक रखा है काश, वो बच्चा आके सोच रहा है काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता।
1: सुनिए, स्वागत है।
3: काश समझ आ जाता मुझको जब वो मेरे पास खड़ा था, बेटा कह रहा है पिता के लिए, काश समझ आ जाता मुझको जब वो मेरे पास खड़ा था, कितना भाग्यहीन था मैं भी बस अपनी जिद लिए अड़ा था, काश न छोड़ा होता उसको सात समंदर पार अकेला, काश न छोड़ा होता उसको सात समंदर पार अकेला, जो मिट्टी बनकर भी मेरी राह तके त्रय दिवस पड़ा था, काश बुद्धिमत्ता को मेरी तभी दिखाता दर्पण कोई, तथा कथित मेरी मेघा का जिग्रहण बदबूदार सड़ा था, सच है उसकी अर्धांगी ने रखा को नो माह संभाला, काश कंगाल सका होता वो ममहित चिंता युक्त घड़ा था, चाहे कितनी रही करीबी काश मुझे दिख जाता यह भी, चाहे कितनी रहे करीबी काश मुझे दिख जाता यह भी, मेरी गलती को नकार कर पल पल मेरे लिए लड़ा था, अगर तौल होती रिश्तों की काश कभी ये परखा होता, एक पलड़े थे नाते सारे मैं केवल दूजा पलड़ा था, और अंतिम है मैं कैसा विद्यार्थी देखो, मैं कैसा विद्यार्थी देखो, पढ़ न सका उसकी गुरुआई, काश परख लेता मैं तभी पिता ताज में नगन जड़ा था, काश परख लेता मैं तभी पिता ताज में नगन जड़ा था। धन्यवाद बहुत बहुत।
1: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी से उनकी कविता काश, विचार उत्तेजक कविता। धन्यवाद करता हूँ उन्हें, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े आदर के साथ मैं सजल के बेहतरीन कवि श्री जे एल राठौर प्रभाकर जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ, आए और काव्य पाठ करें। श्री जे एल राठौर प्रभाकर जी, स्वागत है।
5: धन्यवाद नलिन जी। प्रस्तुत है एक और सजल कि धूमिल सारे चित्र कहाँ तक बोलें, धूमिल सारे चित्र कहाँ तक बोलें, सारे पतित चरित्र कहाँ तक बोलें।
1: वाह वाह।
5: धूमिल सारे चित्र कहाँ तक बोलें, सारे पतित चरित्र कहाँ तक बोलें, सम्मुख मीठी बात बुराई पीछे, सम्मुख मीठी बात बुराई पीछे, मिलते कपटी मित्र कहाँ तक बोलें, मिलते कपटी मित्र कहाँ तक बोलें। संबंधों ने आज आचरण बदले, संबंधों ने आज आचरण बदले, तन मन नहीं पवित्र कहाँ तक बोलें, तन मन नहीं पवित्र कहाँ तक बोलें। बदला प्रकृति स्वभाव प्रदूषण इतना, बदला प्रकृति स्वभाव प्रदूषण इतना, गंधहीन हर इत्र कहाँ तक बोलें, गंधहीन हर इत्र कहाँ तक बोलें।
1: बहुत बढ़िया।
5: धूमिल सारे चित्र कहाँ तक बोलें, अंधकार का राज्य, अंधकार का राज्य निरंतर बढ़ता, अंधकार का राज्य निरंतर बढ़ता, निष्क्रिय ज्योति जनित्र कहाँ तक बोलें, निष्क्रिय ज्योति जनित्र कहाँ तक बोलें, जनित्र यानी जेनरेटर।
1: बढ़िया।
5: अंतिम सजल
1: जी, स्वागत है।
5: सोना चिंता सकी बिस्तरों पर, सोना चिंता सकी बिस्तरों पर, सो रहा शांत मन पत्थरों पर।
3: सही बात।
5: सोना चिंता सकी बिस्तरों पर, सोना चिंता सकी बिस्तरों पर, सो रहा शांत मन पत्थरों पर, हम अविचलित रहे हर हवा से, हम अविचलित रहे हर हवा से, मर गए प्रेम के अक्षरों पर।
1: बहुत बढ़िया।
5: हैं उपेक्षित पड़े हंस सारे, हैं उपेक्षित पड़े हंस सारे, पूज्य बगले हुए अवसरों पर, पूज्य बगले हुए अवसरों पर, कि छाँव मिलती नहीं धूप मिलती, छाँव मिलती नहीं धूप मिलती, अब न विश्वास है तरुबरों पर, न विश्वास है तरुबरों पर, सो न चिंता सकी बिस्तरों पर, सो रहा शांत मन पत्थरों पर, कौन संदेश लाए प्रियों के, कौन संदेश लाए प्रियों के, काग आते नहीं छप्परों पर, काग आते नहीं छप्परों पर।
3: बहुत बढ़िया है, बहुत।
5: भूलते जा रहे हम जड़ों को, भूलते हम जा रहे जड़ों को, अब पहुंचने लगे अंबरों पर, अब पहुंचने लगे अंबरों पर, और अंतिक है कि पा रहे सब नदी नद लवणता, पा रहे सब नदी नद लवणता, मधु लुटाते तदपि सागरों पर, मधु लुटाते तदपि सागरों पर, सो न चिंता सकी बिस्तरों पर, सो रहा शांत मन बिस्तरों पर।
1: जी हाँ, बेहतरीन विचार, बेहतरीन सजल। अभी आप सुन रहे थे श्री जे एल प्रभाकर राठौर जी से सो रहा शांत मन पत्थरों पर। काव्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर के साथ में आदरणीय श्री टीकाराम त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आए और काव्य पाठ करें। श्री टीकाराम त्रिपाठी जी, स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रम चल रहा है, इस क्रम में मैं एक दूसरी कविता पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है मिथ्या मंत्र। कविता सुनिएगा।
3: स्वागत है।
0: गहन कोलाहल भरे इस दौर में नहीं कोई दृश्य जो कि दे सके आराध्य या श्रम साध्य वीणा, नहीं कोई दृश्य जो कि दे सके आराध्या संसाध्य वीणा, युक्ति संगत ज्ञान सम्मत तर्क संगत प्रीति के मादक स्वरों को खोल दे जो द्वार विभ्रम की प्रकृति के, गहन पीड़ा से भरे इन गह्वरों में दलदलों में खाइयों में, हिम नदी परछाइयों में, हाथ के भी पैर के गुम्हे ठिकाने, कौन जाने या की माने, जो खड़े अन्याय का प्रतिरोध करने और अत्याचार का प्रतिशोध लेने, जो निराधम ही नहीं है नरपराधी, चूक जिनसे हो नहीं सकती कदापि भूल से भी, सच रहा हो सर्वदा ही आचरण में और सदा आदर्श नीति के चयन में, आच्छादन आवरण में और वरण में, और सच के सिवा मन में पली मिथ्या और हिंसा का कभी चिंतन न आया, जरा सा भी लेश मात्र या कि ईशत, तीनों का एक ही अर्थ है थोड़ा सा, जरा सा भी लेश मात्र या कि ईशत थी सदा मस्तिष्क में जिनके अहिंसा, हाय उनकी लाश धरती पर पड़ी है। बह रहा शोणित कि मानो फूटता हो कोई निर्झर, किसी पर्वत श्रृंखला से खुल गई हो नींद जिसकी, दूर से और देर से अलसाई हो कई बरस से, और भीड़ थी भगदड़ मची थी बड़े मठ के रास्ते में, भीड़ थी भगदड़ मची थी बड़े मठ के रास्ते में, क्योंकि जब अफवाह फैली कई आतंकी वहां आकर छिपे हैं, क्योंकि जब अफवाह फैली कई आतंकी वहां आकर छिपे हैं, भय यही प्रसृत हुआ जो अचानक ही भीड़ में भगदड़ मचाती चल रही जो कुछ पुरुष कुछ स्त्रियां कुछ बाल बच्चे खोजते फिरते निजी माता पिता अभिभावकों को, जहां कुछ दब गए कुछ ले मरे और अधमरे बाकी, और फिर थी अनवरत चीतकार ध्वनियां, आए फिर कुछ स्वयं सेवक दूत बनकर देवगण के, उठाया उनको कि जो थे रक्त रंजित अस्थि बाधित, रखे निज स्कंध पर ग्रीवा सहारे, स्त्रियों को भी उठाया लाद कर ले गए फिर सब बाहुपाशों में समेटा और वस्त्रों में लपेटा, कर दिया भर्ती निकटवर्ती शिविर में, थे जहां पर चिकित्सालय चिकित्सकगण और दवा भी थी व्यवस्था, वहां पर सब क्षुधित और त्रिषित जन को क्षुधा तृषा निवारण की आदि दैनिक क्रियाओं के संवरण की संहरण की संचरण की, ठीक वैसी ही प्रतीति हुई सभी को, खबर मिथ्या मंत्र ही थी, लगा सबको निजी घर में आ गए हों, बने अभ्यागत यथाक्रम प्रीति पाई स्नेह पाया औषधि तो पाई ही थी, मन हुए थे सुमन स्तवकों सदृश ही, आत्मा की उन अतल गहराइयों में चिरस्पंदित श्वथन वन की कंदरामराइयों में, तभी कवि से कहा सबने, तभी कवि से कहा सबने, लिखो तुम कविता की हे कवि, खोल दे जो सभी वातायन, घृणा को बहिष्कृत कर भर सदन में प्यार की अनुराग की और स्नेह की ताजा बहारें, रोशनी के साथ हर क्षण खोल दो वे जालियां जो रोकती हों प्राणवायु या वाहन उपनाम से फैला रही दुर्गंध जग में, और मग में घोर अंधेरा तिमिर घन फैलता जाता चतुर्दिक, चीरने को पाटने को उसे आए कोई बनकर महामानव, ढेर सारे घृणाओं के भेद तम के जला डालें, आग वह पैदा करें हम निज जठर से निज उदर से,
1: वाह बढ़िया,
0: आग वह पैदा करें हम निज जठर से निज उदर से, कुछ नहीं होगा करें यदि आरती का गान या फिर आर्तनादी केश वर्णन, मिलाओ स्वर में सर्वोदय आम जन का, जोड़ना सीखें उसे ही योग कहते, जोड़ना सीखें उसे ही योग कहते, बहुगुणित और संगठित कर छोड़ दें आतंक हिंसा और गुस्सा, प्रीति जोड़ें स्नेह बांटें, मान लें वह बात मन से मान्यता है, नहीं है पल भी विलंबित, आज हुई है नई सुबह शुभवार भी है, आज हुई है, मान लें यह बात मन से मान्यता है, नहीं है पल भी विलंबित, आज हुई है नई सुबह शुभवार भी है, शुरू कर दो प्रेम का वितरण अमृत है, सुबह से ही जियो जब तक और मन न भरे तब तक, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे श्री टीकाराम त्रिपाठी जी से उनकी लंबी कविता, विचारात्मक कविता, अनुभूति प्रदान करने वाली कविता, उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और काव्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक पंक्ति की कविता के साथ मैं अगले कवि जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वर्तमान जी लीजिए बना रहेगा नूर, वर्तमान जी लीजिए बना रहेगा नूर, और कल की चिंता छोड़िए कल है एक फितूर, कल की चिंता छोड़िए कल है एक फितूर। बड़े आदर के साथ में मैं आदरणीय श्री प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ हेतु, आए काव्य पाठ करें श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी।
2: मैं समय के भीतर कुछ कविताएं पढ़ूंगा
1: जी, स्वागत है।
2: ये हवाएं शीर्षक है, ये हवाएं,
6: स्वागत है।
2: ये जो चल रही हैं तपिश भरी हवाएं, घोला गया है जिसमें बेहद खतरनाक जहर, इन हवाओं के वेग को रोको जल्दी, इन हवाओं के वेग को रोको जल्दी, हवाओं के साथ बहने लगी है ढेर सारी गर्म अफवाहें। तू देने वाले हमारे बीच के ही लोग थे, हमने न हवाएं रोका और न अफवाहों पर लगाई।

0: वे मौत के तांडव
1: क्या में। बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
0: अगली कविता है कवि और स्त्री।
2: जी स्वागत है।
0: दोनों की तुलना मैंने की है। एक कवि अपनी कविताओं में संजोता है थोड़ी सी आग, थोड़ा सा पानी, जैसे संजोती है कोई स्त्री हर रात चूल्हे में थोड़ी सी आग और आंखों में थोड़ा सा पानी।
3: क्या बात है।
0: नई सुबह के लिए,
3: नई सुबह के लिए।
0: एक कवि अपनी कविताओं में सृजता है थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा राग विराग, थोड़ा सा दुख दर्द, जैसे संजोती है एक स्त्री घर को जलाए रखने के लिए प्रेम व अटूट विश्वास, सुख दुख समेटे हुए थोड़ा सा नेह। एक कवि रचता है कविताएं जीवन यथार्थ की भूमि पर, उसमें भरता है कल्पना का रंग, विचारों की ऊष्मा, भावों की खुशबू,
2: बढ़िया
0: जीवन जगत का सौंदर्य, जैसे कोई स्त्री अपने सृजन में भरती है अपना रुधिर, अपनी मांस मज्जा, अपने संस्कार, अपनी प्रकृति की सहज रंगत,
2: वाह वाह,
0: अपने होने का गहरा एहसास। एक कवि अपनी कविताओं में निचोड़ देना चाहता है अपना जीवन सत्व, अपनी रागात्मकता, आत्मा का रस, जैसे एक स्त्री अपने परिवार के लिए निचोड़ देना चाहती है अपना सारा राग, तार तार कर देती है अपनी सांसें, अपने सुंदर सपने, अपनी सुनहली कल्पनाएं, बहुत कुछ घटित होता है उसके जीवन में एक कविता की तरह।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक कवि पार कर लेता है अगम दुख अपनी कविताओं के सहारे, चुनौती देता है वह अंधेरे को उजाले के इंतजार में, जैसे कि स्त्री पार कर लेती है सारी यातनाएं बहुत साहस और धैर्य के साथ अच्छे दिनों के लिए। एक कवि जी लेता है अपनी कविता में एक स्त्री को,
2: वाह,
0: एक कवि जी लेता है अपनी कविता में एक स्त्री को, और एक स्त्री जी लेती है पूरी एक कविता उन्मुक्त भाव से।
2: वाह वाह वाह
3: सर, क्या बात, बहुत अच्छा।
0: एक दो और है।
2: जी स्वागत है।
0: आओ न तुम जेठ की दोपहरी सी, आओ न तुम जेठ की दोपहरी सी, आओ तुम सावनी बरसात सी तो सही, आओ तुम सावनी बरसात सी तो सही, आग पानी खेल में होश गंवा बैठे हो, शम्मा इश्क की जिगर में जलाओ तो सही।
2: वाह वाह वाह।
0: छेड़ो न राग दिल बिखर जाने का तुम, दिल लगी उम्र भर की संभल जाओ तो सही, जीने मरने की चंद कस्मों से क्या होगा, जज्बात का सिलसिला रफ्ता बढ़ाओ तो सही।
2: बहुत बढ़िया।
0: प्रेम की एक बूंद के लिए तरस जाओगे, छोड़कर ईगो अपना ठहर जाओ तो सही, उलाहनों से कब जला है दिल का दिया, उलाहनों से कब जला है दिल का दिया, पैगाम है मोहब्बत ता उम्र जताओ तो सही, प्यार का गीत बन ढल जाए गर तेरी जिंदगी, गमे शाम हो तो फिक्र क्या सुबह आएगी तो सही।
2: बढ़िया।
0: घिराई रात अंधेरे ने अपनी बाहें खोल दी, गगन में चांद ने अपनी आमद दिखाई तो सही, ढलानों से फिसलो नहीं अंधेरी घाटियों में, उल्फत की गहरी दरिया में डूब जाओ तो सही,
1: बहुत
0: पार कर लूंगा समंदर हर रुसवाइयों का, वक्त बेवक्त तुम साथ मेरा निभाओ तो सही। अंतिम कविता।
2: जी स्वागत।
3: स्वागत।
0: दो पंछी हैं। लगो प्रीत को बान टाइटल है। उस दिन आसमान से बरस रही थी आग, धरती पर चारों ओर थमी हुई थी कुछ समय पहले की टिकोरा झड़ा देने वाली पागल बयार, संचारी भाव की तरह, और कुतर रहा था दिल को गहरा और डरावना सन्नाटा।
2: बढ़िया।
0: कितना मनहूसियत भरा वह दिन था, अड़ियल बैल की तरह आगे बढ़ने में कसरिया रहा था, दरअसल वह उस गांव में जेठ की लू भरी पहली दोपहरी थी, चिलचिलाती धूप में बहुत बेहाल थे वे दोनों, भीषण गर्मी ने सोख लिया था भीतर की नमी, जमीन और तालाब की दिशाओं की, और उन दोनों के भीतर की भी, कंठ में फंसी थी प्यास, हांफते मुंह में अटके थे कुछ शब्द, प्रेम के आंखों में था नेह जल।
2: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन छूट रहा था उनका संचित धैर्य, उस निर्जन बियाबान में थे सिर्फ वे दोनों, जान हथेली पर लिए अपने नन्हे पंखों से नाप लिया था उन दोनों ने साथ साथ कई कोस आकाश फेफड़ों में भर ली थी।

0: हवा जीने की गतिमानता मन में थी बची खुची उम्मीदें, पहुंचे वे उस जगह जहां वर्षों से पनिहारियों के पीतल के गगरों की रगड़ से बन गए थे कुएं की जगत पर गहरे निशान हथेली जैसे।
1: बहुत बढ़िया।
0: अब प्रायः कम ही आती हैं पनिहारिने, उस हथेली भर जगह में बचा हुआ था थोड़ा सा जल, जैसे डबडबाई हो आंखें या किसी विरहीन पनिहारिन के आंसू। जल देखकर बढ़ गई थी कई गुना ज्यादा उनकी प्यास, पानी के अनुपात में बहुत घना था दोनों का नेह नाता, चंदा और चकोर सा। हथेली भर जल से बुझ नहीं सकती थी दोनों की प्यास, कौन पहले पिए जल था बड़ा कठिन प्रश्न। उनके प्रेम के बीच टूटी जा रही थी सांसें, फिर भी कहते रहे वे पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू। बहुत ही घनी थी दोनों की परस्पर की प्रीत, लगा था बहुत गहरे प्रीत का बान। पहले पहल किसी ने नहीं छुआ पानी, पहले तू पी, पहले तू पी, रटते रहे वे दोनों। और कुछ ही पल में छूट गए उन दोनों के प्राण, एक साथ निष्प्राण पड़े थे वे चिड़ा चिड़ी उस हथेली भर पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सर। और अब मैं तीन इन पंक्तियों के साथ जो अब तक संचालन कर रहे हैं उन डॉक्टर नलिन निर्मल जी को बुला रहा हूँ। जीवन का आनंद हो अहंकार मदहीन, अहंकार कंटक विकट करत चेतनाहीन कदम पग पग हो लड़खड़, हर पग बेकल पीर हृदय मति के स्वर गड़बड़, और विद्यार्थी छवि तेज उजासी तन मन जन का अहंकार व्रण शूल महारिपु है जीवन का। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं आदरणीय डॉक्टर नलिन निर्मल जी को। स्वागत है आपका निर्मल जी।
2: एक मुक्तक के साथ मैं इस सत्र की अपनी बात आरंभ करता हूं कि देशभक्ति त्योहार नहीं है मना लिया और भूल गए।
1: वाह वाह वाह, सही।
2: देशभक्ति त्योहार नहीं है मना लिया और भूल गए, प्रतिपल इसमें जीना है इसमें जो मशगूल रहे, तो उनने पाया मान जगत में नाम अमिट वे कर बैठे, उनने पाया मान जगत में नाम अमिट वे कर बैठे, मातृभूमि का चिंतन रखते जन मन गण यथगान कहे। वो देशभक्ति त्योहार नहीं है मना लिया और भूल गए। हमारा शहर सागर निश्चित रूप से आज सुंदर शहर है, और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ सागर चकरा घाट के ऊपर।
1: स्वागत है, स्वागत।
2: लाखा बंजारे की बस्ती बिंद श्रेणियों के ऊपर, उस स्वर्ग भान के उपक्रम खिलते हरी सिंह की इस भू पर, तो पूरब से उजियारा होता मन प्रसन्न हो जाता है, वो कोकिल का स्वर उमड़ घुमड़ कर जीवन को हर्षाता है, तो काव्य छंद रस अलंकार से पद्मा कर जागृत होते, वो वृंदावन गोकुल से मंदिर देव कृष्ण दर्शन होते, चक्रधारी का घाट मनोरम दिल में बसती जगदम्बा, वो कातक गीत लोरियां मधुरिम आए जवारों संग अम्बा। लाखा बंजारे की बस्ती तो पूर्ण काज हो छटा बिखरती मन प्रसन्न फसलें आई, वो भजन मंडली ने स्वर खींचे आशाएं भी मुस्काई, तो कर्क व्रत की गर्म पताका जीवन का उल्लास बनी। जी हाँ, हम सागर वाले कर्क व्रत के ऊपर रहते हैं।
1: जी, जी, जी।
2: कर्क व्रत की गरम पताका जीवन का उल्लास बनी, और अंचल की बुंदेली बोली आम जनों का साज बनी। लाखा बंजारे की बस्ती विंद श्रेणियों के ऊपर, और हम चूंकि विंध्याचल की छोटी पहाड़ियों पर रहने वाले लोग हैं, तो एक विंध्याचल के मौसम पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, लीजिए सुनिए। विंध्य क्षेत्र का मौसम प्यारा, वन उपवन मनुहार सजी, और नगर बने छोटे टीलों पर मधुबन लगती गली गली। विंध्य क्षेत्र का मौसम प्यारा, वन उपवन मनुहार सजी, और नगर बने छोटे टीलों पर मधुबन लगती गली गली, तो बुंदेली भाषा के स्वर हैं भाव भूमि मीठी लगती, बुंदेली भाषा के स्वर हैं भाव भूमि मीठी लगती, और लोकगीत आला राई से रातों की महफिल सजती, तो बजे टिमकिया रम तुला संग, बजे टिमकिया रम तुला संग, तान बधाई लगे भली, और नगर बने छोटे टीलों पे मधुबन लगती गली गली।
1: बहुत सुंदर।
2: खजुराहो जो हमारे विंध्य क्षेत्र के स्थल है, खजुराहो बांदकपुर देखो नोहलेश्वर के शंकर देखो नोहटा।
1: जी जी जी।
2: खजुराहो बांदकपुर देखो नोहलेश्वर के शंकर देखो, राजा राम ओरछा शासन जैन तीर्थों के स्थल देखो, तो बागेश्वर की महिमा ताजी, बागेश्वर की महिमा ताजी, बालाजी सरकार बली, तो नगर बने छोटे टीलों पर मधुवन लगती गली गली। तो विंध्य क्षेत्र का मौसम प्यारा, वन उपवन मनुहार सजी, नगर बने छोटे टीलों पर मधुवन लगती गली गली। तो माई नर्मदा हर हर गंगे, चंबल नद घड़ियाल हैं चंगे, नदी

0: धसान सुनार बेतवा, धरती पन्ना उगले हीरे।
1: जी जी जी।
0: नदी धसान सुनार बेतवा, धरती पन्ना उगले हीरे, महुआ सागुन साल आंवला, देते प्राण वायु भली, नगर बने छोटे टीलों पर, मधुबन लगती गली गली।
1: बहुत
0: विंध क्षेत्र का मौसम प्यारा, बासंती मनुहार सजी, नगर बने छोटे टीलों पर, मधुबन लगती गली गली। जी हाँ, कार्यक्रम का समय लगभग पूर्ण हो रहा है, तो मैं आज के उपस्थित कवि साहित्यकार श्री प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री टीकाराम त्रिपाठी, श्री जे एल राठौर प्रभाकर जी एवं श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी और मैं स्वयं नलिन जैन, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने सागर आकाशवाणी के इस काव्य गोष्ठी को सरस ढंग से सुना।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी। आमंत्रित कवि थे प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, टीकाराम त्रिपाठी, संतोष श्रीवास्तव, नलिन जैन और जे एल राठौर। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
3: Ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
4: First Ball 20.
5: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। वे करोड़ों दिलों की धड़कनों में धड़कती हैं, और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो हर गेंद एक कहानी बन जाती है, हर रन एक उम्मीद और हर विकेट एक उत्सव। आज बर्मिंघम की धरती पर महिला T20 विश्व कप में भारत के अभियान का आगाज हो रहा है।

भाग 220। सुबह 6:45 में सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 4, प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेखक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार बितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का 3रा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूरी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छह गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे, आलेख औसर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत MM करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियाँ गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसी ने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियाँ हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा। उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

0: बतम न झुकेगा कर वतन का हर जवान की बतम हिंदुस्तान की बतम।
1: साथियों विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था, और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान लें हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
3: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई, इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
3: हाँ हाँ रूप सिंह।
1: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
3: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा?
1: हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो।
3: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। हाँ, बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: हाँ। वो तो मैं देख ही रहा।

0: आहू मंगरू तमाशा ही देख रहा।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
0: अच्छा,
1: राम राम।
0: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
0: हाँ अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
2: पिया

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू की खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
0: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
0: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
0: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान है, देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
0: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
0: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ, जाओ,
3: जाओ।
1: अरे मंगरू, मंगरू
0: वो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए हैं। चौधरी जी?
0: हाँ ओ, ओ, ओ, देख माधो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
0: ठीक है
1: मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
0: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आए आप। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
0: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना।
0: जी, जी वो...
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
0: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
0: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
4: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
0: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा धर्म से, धर्म से।
4: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी मालिक, मालिक
4: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
4: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पांव पड़ता हूँ आपके। आप
5: मंगरू
0: पटवारी जी, पटवारी जी
5: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
4: जी 3,000।
5: ठीक है मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
4: जी आप?
5: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
4: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलो, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
5: अच्छा भैया जय राम जी।
0: पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
5: मंगरू तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
5: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
5: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: नहीं वो क्या पटवारी जी है?
5: देखो रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा क्या?
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
5: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
5: देखो
0: क्या करूँ,
5: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन
5: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
0: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
5: कौन से रुपए भाई?
0: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
5: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
0: काहे?
5: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
0: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
5: अच्छा ये लो मंगरू।
0: ये क्या कागज?
5: हाँ
0: ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
5: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
5: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
5: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
5: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा
5: हाँ। अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा,
5: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
0: 11,000?
5: हाँ भाई,
0: सच सच कह रहे हो पटवारी जी?
5: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
0: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
5: लेकिन अब फजूल खर्च मत करो।
0: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
5: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी तो चलिए।
0: आ गए पंडित जी? चलिए, आइए पटवारी जी, आइए आइए।
5: चलो चलो।
6: कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाज़ों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: A country with 1.4 billion inhabitants.
4: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: Frontier models is spearheading global innovation.
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
5: The world seeks trusted and reliable partners.
6: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
5: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
7: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमार।

मारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: लिखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।
2: तो

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने, माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

ने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलती मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुझाव किया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने CID, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब ये है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदन लाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते।
1: मैं क्या जानू क्या है, जादू है, जादू है, जादू है।
0: एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।
2: सुनो

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने ये गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत कुमार